सुप्रभात एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास के 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून ईस्वी सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों

0: की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: The news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision.

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुनेंगे सेम की खेती।

0: खेती किसानी करने वाले सभी भाई बहनों को मेरा जोहार। खेती की बातें के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे सेम की खेती के बारे में। भारत में कई सब्जियों की खेती होती है जिसमें सेम की खेती का एक अलग स्थान है। वैसे मौजूदा समय में सेम की खेती भारत के विभिन्न राज्यों में होती है, मगर आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें सेम की खेती की अधिक जानकारी नहीं है। ऐसे में आज हम किसानों के लिए सेम की खेती से जुड़ी अधिक जानकारी लेकर आए हैं। सेम की खेती के लिए दोमट, चिकनी और रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी गई है, मगर ध्यान रहे कि भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, साथ ही भूमि क्षारीय व अम्लीय वाली नहीं होनी चाहिए। इसका पीएच मान 5.3 से 6 हो तो अच्छा। सेम की फलियां लंबी, चपटी, टेढ़ी, हरे और पीले रंग की होती है। किसान भाई सेम की अच्छी उपज के लिए पूसा अर्ली, काशी हरितिमा, काशी खुशहाल, BR सेम 11, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जवाहर सेम 53, जवाहर सेम 79, कल्याणपुर टाइप, रजनी, HD1, HD18 और प्रोलिफिक जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। इस फसल के लिए बुआई जुलाई से अगस्त का समय उपयुक्त माना गया है। ध्यान रहे कि बुआई समतल खेत में उठी हुई मेड़ों या क्यारियों में करें। इस तरह फसल का उत्पादन अच्छा और अधिक मिलता है। अगर खेत में नमी की कमी है तो बुआई से पहले पलेवा कर लेना चाहिए। खेत को बुआई से पहले अच्छी तरह जोतकर पाटा लगा लेना चाहिए। बुआई के समय बीज अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी हो। इसकी खेती में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 20 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खेत की तैयारी करने के बाद लगभग 5 मीटर की चौड़ी क्यारियां बनाएं। क्यारियों के दोनों किनारों पर लगभग 5 से 2 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 75 सेंटीमीटर या बेल वाली किस्मों में 1.5 मीटर तक रखनी चाहिए। इनकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बीजों को रोग से बचाने के लिए कवकनाशी से उपचारित अवश्य करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेम की फसल में फफूंद रोग ज्यादा लगता है, इसलिए किसानों को रोग प्रतिरोधी किस्म का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा बीज को उपचारित कर बुआई करना चाहिए। इतना ही नहीं, सेम की फसल में चैपा और बीन बीटल जैसे कीट बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्लोरपाइरीफॉस 20 EC 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़क दें। इसका छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और पोटाश का प्रयोग करें। गर्मी के मौसम में हर 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश में सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। ध्यान रहे कि जल भराव न होने पाए। बेल वाली किस्मों को ऊपर चढ़ाने के लिए मचान, लकड़ी या बांस का सहारा दें। फसल की तुड़ाई किस्म व बुआई पर निर्भर होती है। वैसे जब सेम की फलियां पूरी तरह से विकसित हो जाएं, साथ ही कोमल अवस्था में आ जाएं, तब फसल की तुड़ाई करना चाहिए। अगर तुड़ाई में देर होती है तो फलियां कठोर हो जाती है और इन पर रेशे आ जाते हैं, जिसके कारण बाजार में सेम की फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। अगर फसल की उत्पादकता, जलवायु, मिट्टी, किस्म, सिंचाई समेत सुरक्षा प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो सेम की फसल हर किसान के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। खेती की बातें में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आज का चिंतन सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, याद रखिए, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:16 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं भक्ति रचनाएं अनूप जलोटा के स्वर में।
1: जपा करूं

कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, आज आपने सुना अनूप जलोटा के गाए भक्ति रचनाएं। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारिच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना

0: ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का समय होगा लोक गीतों का और 7:35 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम सुरांजलि में आज रविंद्र संगीत का। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे रीढ़ की हड्डी

में दर्द कारण और निदान विषय पर सुबह 8 बजे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और यहीं से आप सुनते हैं मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। सुबह 8:30 का हमारा समय होता है प्रादेशिक समाचार का, जो कि रिले किया जाता है आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत। सुबह 9 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा और 9:05 पर कार्यक्रम सुरंजना में आज आप सुनेंगे एक ही गायक को। 9:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 10:10 पर विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 10:20 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सुबह 11 बजे और दोपहर 12 बजे श्रोता सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे भावगीत। 12:30 का हमारा समय होता है शास्त्रीय संगीत का। दोपहर के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा। 1:20 और दोपहर 2:30 पर श्रोता सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। दोपहर के 2 बजे मिड डे न्यूज़, 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। 2:55 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। अपराह्न के 3 बजे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण होगा और अपराह्न 3:30 पर आप सुन सकते हैं सुगम संगीत। 3:45 का समय होगा लोकगीतों का और संध्या 4 बजे एवं 5 बजे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। 4:02 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं संदेश टू सोल्जर कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से। 5:02 का समय होता है युवा साथियों का, आप सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर कल कारखाने कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और संध्या 6 बजे हिंदी में समाचार, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 6:20 पर संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 6:10 का हमारा समय होगा झारखंड के लोकगीत का। 6:30 पर आप सुन सकते हैं कृषि जगत और संध्या 7 बजे प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। यहीं से प्रसारित होता है जिले में आजकल संध्या 7:10 पर। 7:15 का हमारा समय होता है बांग्ला कार्यक्रम का। 7:45 पर आज के दिन हमारे श्रोता सुनते हैं खेल कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे फिल्म संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। रात्रि 9 बजे यहीं से आप सुनेंगे न्यूज़ एट नाइट। 9:15 पर स्पॉटलाइट। रात्रि 10 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 10:30 पर आप आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी।

0: श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 MHz पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।
1: आप और हम, आप और हम।
0: कहते हैं ना कि घड़ी की सुई अपनी रफ्तार से निरंतर चलती चली जाती है और समय का पहिया आगे बढ़ता चला जाता है। जी हाँ, आज फिर वही सुबह है, वही रुत है और वही पल है जहाँ खत्म होता है आपका इंतजार। हम फिर से आपके प्यार भरे खत और मेल लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आप और हम में। तो कीजिए स्वीकार निमिषा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हमेशा की तरह आज भी आपके खतों और मेल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार
0: सर। जैसा कि आज भी हमारे पास मेल और खत आए हुए हैं और इसमें से हम बिना समय गवाए उठा रहे हैं ये पहला मेल दीपक शर्मा का, गोलमुरी जमशेद।

0: दर्शकों से।
1: अच्छा, क्या लिखते हैं दीपक जी?
0: दीपक जी लिखते हैं, आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम।
1: दीपक जी को भी सब परिवार हमारी ओर से नमस्कार।
0: आगे इन्होंने जिक्र किया है, मैं आपके केंद्र में पहले भी मेल कर चुका हूँ और एक बार फिर आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब हूँ। आकाशवाणी जमशेदपुर से हमारा रिश्ता वर्षों पुराना है और पुराने रिश्तों में गहराई भी उतनी ही हो जाती है। ये कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि इन दिनों कुछ पुराने कार्यक्रमों को फिर से प्रसारित किया जा रहा है, मसलन हेलो डॉक्टर, हेलो आपकी फरमाइश। दरअसल इन कार्यक्रमों से कई यादें जुड़ी हुई हैं और ऐसे कार्यक्रमों को अगर फिर से शुरू किया गया है तो हम जैसे श्रोताओं को एक नई स्फूर्ति प्रदान की गई है। आकाशवाणी के तमाम अधिकारियों का मैं आभारी हूँ जो फिर से एक बार विगत दिनों को जी पा रहा हूँ। दिल से आपका धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक जी। आप जो है, आपने लिखा है कि पहले भी आप मेल कर चुके हैं। हाँ। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कुछ दिनों बाद फिर से अपने विचारों को हमसे साझा करने की फिर से आपने जो है प्रयास किया है। हाँ भाई दीपक शर्मा जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं और आपने स्वयं लिखा कि आप पहले भी मेल कर चुके हैं।
0: जी हाँ।
1: और इस बार पुनः आपने मेल किया है हमारे इस कार्यक्रम के प्रति फीडबैक देते हुए, तो निमिषा जी बहुत ही अच्छा लगता है कि जो है हमारे जो श्रोता हैं कार्यक्रमों से अपना स्नेह बनाए रखते हैं और अगर अपने सुझावों को हमसे साझा करते हैं तो और भी अच्छी बात है।
0: जी हाँ।
1: और जैसा कि अक्सर हम इस बात को दोहराते हैं कि सुझाव और शिकायत हम दोनों का सहर्ष स्वागत करते हैं।
0: जी।
1: लेकिन हाँ, यही है कि समालोचनात्मक दृष्टिकोण का होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमारे कोई भी श्रोता अगर हमारे कार्यक्रमों में कुछ अगर त्रुटियां हैं या कुछ किसी तरह के सुधार की आवश्यकता है उत्कृष्टता के लिए और क्या करनी है, तो निश्चिंत होकर बेहिचक अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। तो आपको ये मेल दोबारा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है दोबारा है या और भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, क्योंकि आपने लिखा है कि आप पहले भी मेल कर चुके हैं। और ये बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है कि जो कुछ पहले के कार्यक्रम थे जो किसी कारणवश बंद हो गए थे, खास करके कोविड के समय, जैसे हेलो डॉक्टर, हेलो आपकी फरमाइश, तो फिर से प्रारंभ हुआ है। तो चूंकि हमने आप ही जैसे श्रोताओं को ध्यान में रखकर, मतलब हमारे जो सुधी श्रोता हैं, उत्साही श्रोता हैं, तो ये दोनों कार्यक्रम जो है आज के समय की डिमांड है, इनमें लोगों की काफी अभिरुचि है। तो हेलो डॉक्टर का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है और ये जो दूसरा फोन इन कार्यक्रम है हमारे केंद्र का, मतलब दोनों चैनलों को अगर मिला के कहा जाए, तो हेलो आपकी फरमाइश भी बहुत ही अभी जबरदस्त इसके लिए फोन कॉल आ रहा है। निमिषा जी, आपको तो इसका ज्यादा अनुभव हो रहा होगा।
0: हाँ, पूरे देश भर से इस कार्यक्रम के लिए फोन आ रहे हैं,
1: ऐप के माध्यम से, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन पा रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: तो बहुत अच्छी बात है। और भी अगर कुछ और कार्यक्रम आप जैसे श्रोताओं को अगर ध्यान में है कि और हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं कार्यक्रम का री इंट्रोड्यूस करना या कोई नया कार्यक्रम, तो निश्चित रूप से अपने विचारों से हमें, सुझावों से अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दीपक जी।
0: दीपक जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की और ये चिट्ठी आई हुई है अशोक सिंह जी की गम्हरिया जमशेदपुर से।
1: अच्छा अच्छा।
0: लिखते हैं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आगे इन्होंने जिक्र किया है, विविध भारती और प्राइमरी चैनल को सुनते हुए मुझे लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज भी रेडियो के कार्यक्रम के प्रति मेरी रुचि कहीं भी कम नजर नहीं आती है। मैं रेडियो में ऐसा रम जाता हूँ कि मुझे दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। पहले तो हम लोग रेडियो सेट पर आकाशवाणी को ट्यून कर सुना करते थे, लेकिन आज समय बदला है और हम कहीं भी मोबाइल के माध्यम से रेडियो को सहज सुन पाते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों में जहां कल कारखाने, कल्याणी, कृषि जगत, जिज्ञासा, आलोक, जरा सुनिए, खेल खिलाड़ी, हेलो डॉक्टर, हेलो फरमाइश, नमस्कार जमशेदपुर, आप और हम जैसे कार्यक्रम समाहित हो तो भला हमारा मन कहीं और कैसे लग सकता है। समाचारों के श्रृंखला में भी बढ़ोतरी की गई है जिससे हम देश दुनिया के तमाम खबरों से भी अवगत हो जाते हैं। और देखिए ना, कल पर्यावरण दिवस था और इस विषय पर कृषि जगत और कल कारखाने में बहुत ही सुंदर वार्ता प्रसारित की गई थी। ऐसे प्रसारण का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं अपने श्रोता भाइयों की तरफ से एक बार तहे दिल से आकाशवाणी का धन्यवाद करता हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष की यात्रा पर आप सबको ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक सिंह जी। आपने लिखा है कि आप भी बहुत अच्छे जो है, मतलब कहा जाए नोस्टैल्जिक फीलिंग वाला आपका विचार है, पत्र है। नोस्टैल्जिया मतलब बीते दिनों के संस्मरण से युक्त सुनहरी यादों को, जिसे बोल सकते हैं हम। आप 25 साल से ऊपर से हमारे केंद्र को सुन रहे हैं और जो है अपनी रुचि दिखा रहे हैं, आज भी आपको एक नयापन नजर आ रहा है, तो यही इस विधा की खासियत है रेडियो जॉनर का, रेडियो के कार्यक्रमों का, कि हमको काफी अपनापन और नयापन महसूस होता है। और हमारे टीम की लगातार, निमिषा जी, हम लोगों की

0: हम लोगों का प्रयास है कि कार्यक्रमों का ऐसा प्रस्तुतिकरण हो कि नयापन हो, अभिनवता हो, सृजनात्मकता हो, सक्रिय विचार आए और जो लोग सकारात्मक पथ पे आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। और एक बड़ी अच्छी बात हमारे इन भाई सुधी श्रोता ने लिखी है कि हमारे कई कार्यक्रमों का इन्होंने चर्चा कर दिया है कि ये कार्यक्रम जो है एक तरह से इन्होंने गागर में सागर की तरह बता दिया है कि कुछ कार्यक्रम को इन्होंने छोड़ दिया है, वो मैं भी जोड़ देना चाहता हूँ कि जैसे स्वर्ण रेखा है साहित्यिक कार्यक्रम, उसके अलावा जो है बुजुर्गों के लिए हमारे अपने हैं संस्कृत कार्यक्रम है, तो सबको मिला दिया जाए। और जितने कार्यक्रमों की ये भाई अशोक जी ने चर्चा की है तो वास्तव में हमारे पूरे कार्यक्रमों का रूपरेखा है
1: और हर वर्ग के लिए,
0: और दूसरी जो अच्छी बात है कि जो हमारा जो समाचार है राष्ट्रीय समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से आ रहे हैं, प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से आ रहा है, तो और समाचार में भी समय में बढ़ोतरी हुई है जो हमारे श्रोताओं को काफी अच्छा लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आकाशवाणी के 90 वर्षों की यात्रा पे आपने जो बधाइयां दी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आपने लिखा है कि कल 5 जून को जब आप मेल कर रहे थे तो आपके लिए 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस था तो उसपे कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, तो आज निमिषा जी हम लोग जब इस कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं तो आज 11 जून है और कल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे प्रत्येक दिवस का समय का जो है हमारे महानिदेशालय से प्राप्त एक बहुत सुरुचिपूर्ण और काफी सुसंकलित एक प्रोग्राम कैलेंडर है, तो हम लोग काफी पहले से उन सारे इस प्रोग्राम कैलेंडर के माध्यम से क्षेत्र के अनुसार, प्रोग्राम के विशिष्टता के अनुसार और जो है मौसम के अनुसार सारे विषयों को हम लोग चयन करते हैं और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं और फिर प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक जी को।
1: अशोक सिंह जी के इस पत्र के बाद अब फिर से बारी आती है एक मेल की और ये मेल आया हुआ है गीतिका बैनर्जी का एस टाइप मोड आदित्यपुर जमशेदपुर से।
0: क्या लिखती है गीतिका बहन?
1: लिखती है आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: गीतिका बहन को हमारी ओर से सब परिवार नमस्कार।
1: आगे इन्होंने लिखा है मैं गीतिका बैनर्जी रेडियो की बहुत पुरानी श्रोता हूँ और आकाशवाणी जमशेदपुर को मैं यहाँ बनते हुए देखी हूँ। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आकाशवाणी के 90 साल की उपलब्धि के बारे में बातें हो रही हैं तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाई कि इतने वर्षों में मैंने क्या क्या देखा है आकाशवाणी में बदलते हुए। प्रसारण के समय भी कई तरह के फेरबदल मैंने देखे हैं और कार्यक्रमों को ऊंचाई पर रोज उठते हुए देखा है। आकाशवाणी में कार्यरत लोगों की मैं आभारी हूं जो अपनी कला और गुणवत्ता रेडियो के माध्यम से हम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए कार्यक्रम कल्याणी और अंगना का जो संचालन होता है उसमें प्रसारित किए जाने वाली टॉपिक बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ ही हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपने जो स्त्री रोग विशेषज्ञ को आमंत्रित किया और श्रोताओं का फोन कॉल्स उसमें शामिल किया, ये कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेशक इस कार्यक्रम में मेरा कॉल शामिल नहीं हो पाया, इसका मुझे थोड़ा सा दुख है। कोई बात नहीं, अगले कार्यक्रम में फिर कोशिश करूंगी। आप और हम कार्यक्रम का भी मैं आभार प्रकट करती हूं। यह एक श्रोताओं को ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां से लोग अपने मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत आभार और धन्यवाद बहन गीतिका बनर्जी को कि आप तो आदित्यपुर के निवासी हैं जैसा कि आपने लिखा है और आकाशवाणी का ये जो मुख्य टाटा कांडरा मुख्य रोड पर जो ये भवन है इसको आपने बनते हुए भी देखा है, तो आपने मतलब यहाँ के निर्माण को भी देखा है और यहाँ के कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण की भी जो है मतलब आरम्भ से लेके अभी के दौर को आपने देखा
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल।
0: और बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि रोज आप कार्यक्रमों को ऊंचाई पे उठते हुए देख रही हूँ। निमिषा जी हमें अपने जो हमारे लिए जो प्रशंसा के जो विचार होते हैं निश्चित रूप से हमें अच्छा लगता है, हम उत्साहित होते हैं, लेकिन कहीं भी हमें ऐसी नहीं होती कि हम उससे बहुत ही एक संतुष्टि की भावना आ जाए और हम फिर कार्यक्रमों में ज्यादा ध्यान न दें। तो हमारे लिए जो उत्साहवर्धन का कार्य करता है हमारे सुधी श्रोताओं के प्रशंसा के दो शब्द। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि जो कल्याणी और अग्ना कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है तो टॉपिक भी इन्हें अच्छा लगता है। तो निमिषा जी ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कार्यक्रम बैठक में पिछले दिनों इस बात का हमने चर्चा किया कि कल्याणी कार्यक्रम में जो पहले कुछ दिनों पूर्व जो है एक पुरुष कंपियर की आवाज आती थी होती थी
1: जी हाँ।
0: तो चूंकि कल्याणी कार्यक्रम ही फैमिली वेलफेयर कार्यक्रम है, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जच्चा और बच्चा दोनों को समर्पित हाँ। तो विषय भी वैसे होने चाहिए और चूंकि महिलाओं का और जो है माताओं का और नवजात बच्चों से संबंध से पालने वाली माताओं का वो कार्यक्रम है, तो ऐसे में अगर बहने और माताएं ही बात करें डॉक्टरों से विशेषज्ञों से तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए कार्यक्रम बैठक में चर्चा के पश्चात हम लोगों ने इस बात को आगे लाया कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण में भी हमारी महिला कंपियर्स की भूमिका रहेगी। और विषयों के चयन में भी खास सावधानी बरती जाती है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और आपने और भी 90 वर्ष के हमारे जो होने पर ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी का जो 90 वर्ष हुआ उसके ऊपर कार्यक्रमों को सोशल मीडिया से जो आपने जाना, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहन गीतिका बनर्जी को आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रमों से यूं ही अपना लगाव बनाए रहें और बीच बीच में अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें।
1: गीतिका जी के इस मेल के साथ ही हमें कार्यक्रम से विराम लेना होगा। और विदा लेने से पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम का पता बता दें।
0: बिल्कुल,
1: कार्यक्रम का पता है, अगर आप पत्र लिखते हैं तो कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी जमशेदपुर, और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। पत्र लिखें, मेल करें। फिलहाल मुझे और राय सर को इस साप्ताहिक कार्यक्रम आप और हम से अनुमति दें। नमस्कार। आप और हम, श्रोताओं, आपके पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम आप सुन रहे थे आप और हम। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनवाते हैं लोकगीत। लोकगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मगही गीत हरिवंश प्रसाद सिंह और साथियों से।

श्रोताओं, आज के लोकगीतों के कार्यक्रम में आपने सुना मगही गीत हरिवंश प्रसाद सिंह और साथियों से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कर्णिका बंदोपाध्याय का गाया रविंद्र संगीत, और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सुरांजलि अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और अब लीजिए सुनवाते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के आज के इस अंक में श्रोताओं, आप सुनेंगे भेंटवार्ता रीढ़ की हड्डी में दर्द, कारण और निदान विषय पर। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर AK गुप्ता, जिनसे बातें कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, आज के लोग आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत करते हैं। खासकर युवाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। आखिर क्या इसके कारण होते हैं और इससे फिर हम कैसे निजात पा सकते हैं, इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके गुप्ता। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने का क्या मुख्य कारण होता है?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस एज पर हैं। अगर देखिए बच्चों को, तो बच्चों को डिजीज से होता है मेनली, तो इसमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे झारखंड, बिहार और इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन है,
0: बोन टीबी,
1: हाँ, जिसको बोन टीबी अक्सर लोग बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है हड्डी के स्पाइन के बीचों बीच जगह में होते हैं, ये बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, एडोलेसेंट में भी होते हैं। तो डिजीज जो है ये बच्चों में, एडोलेसेंट में मेन रीजन है। और जब बड़ा हो जाता है, तब जब ये टू व्हीलर चलाने लगता है, ये टू व्हीलर का जर्किंग से, खास करके खराब रोड जहां हो या ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स जहां हो, तो इस तरह से वो जो बॉडी का वायर एंड टीयर जो होता है वो फास्टर होता है। होता तो है सब में, सबको होगा भी, लेकिन ये ज्यादा जल्दी होना शुरू हो जाता है। उसके वजह से ऊपर में, जैसे कि गर्दन के हड्डी जिसको हम लोग सर्वाइकल स्पाइन्स बोलते हैं, वहां पर असर होगा, फिर नीचे में जिसको लंबर स्पाइन्स बोलते हैं उस पर भी असर होगा। तो ये एक जीवन शैली का तरीका, लाइफस्टाइल का तरीका है कि जिससे की भी हो सकता है, ये डिजीज नहीं, इसको हम बोलेंगे कि लाइफस्टाइल। और फिर उसके बाद जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, बहुतों का आदत है कि लेट के पढ़ना, तो ये सब चीज जो है बैकबोन के लिए भी सही नहीं होता है। और बाकी देखिए जो इंजुरी है, इंजुरी से तो टूट सकता है, टूटना, स्प्रेन होना, और भी है जिन लोगों को लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठा रहना पड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर लोगों को जो चलाते हैं, वो लोगों का भी है। तो उन लोगों का अगर अर्गोनॉमिकली डिजाइन चेयर, हम लोग का स्पाइन का शेप होता है एस के जैसा, आप देखिएगा जो बढ़िया कार्स है उसके सामने का सीट सीधा नहीं रहता है, थोड़ा सा एस जैसा रहता है, हाँ, कर्व किया हुआ, उसी तरह का अर्गोनॉमिकली डिजाइन चेयर नहीं हो तो कंप्यूटर जो लोग चलाते हैं उन लोगों को भी देखा गया कि काफी होता है। फिर स्टूडेंट्स का पोस्चरल, बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोस्चर में रह के पढ़ना, हेवी जो वेट कैरी करते हैं माथे पर, उनके लिए भी वो एक वजह है बैकएक का।
0: आपकी बातों से ये पता चलता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द आमतौर पर हर उम्र के लोगों में पाया जाता है,
1: हाँ।
0: लेकिन खासकर युवाओं में ये ज्यादा होता है। कारण तो आपने बताया, मान लीजिए कोई रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान है और डॉक्टर के पास नहीं जा रहा या इसे नजरअंदाज कर रहा हो, तो क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं?
1: मैं एक ही चीज कह सकता हूँ आपको, युवा जो बताए, लेकिन थोड़े से ज्यादा उम्र में ज्यादा पाया जाता है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस उन लोगों में ज्यादा होता है। और परिणाम ये हो सकते हैं कि अगर वो उस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये नर्व पर दबाव होता है, क्योंकि नर्व्स निकलते हैं स्पाइन से, तो नर्व पर अगर दबाव होंगे तो वो पैर में, हाथों में उसका असर आ सकता है, वो झिनझिनी, नंबनेस, हाँ, फिर ढीलापन, जैसे कि आस्ते आस्ते होगा कि वो अगर नर्व दबे, वो नर्व दबना बहुत कुछ से हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि भारी बोझा उठाए तब से, उससे भी हो सकता है, और लंबा स्पॉन्डिलोसिस आगे बढ़े हड्डियों का दबाव से भी हो सकता है, वो फिर मुश्किल है, क्योंकि वो सेंसेशन घट जाएगा, वो स्पर्श करने का वो पता नहीं चलेगा, उंगलियों का क्षमता घट जाएगा, मसल का क्षमता घट जाएगा,
0: दिनचर्या में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
1: जी हाँ, तो इसीलिए बैकएक को तो देखना ही चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस में तो पूरा निचला हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाएगा।
0: अच्छा, ये भी हो सकता है,
1: हाँ, पैरालाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद आपका पेशाब बंद हो जाएगा, पखाना बंद हो जाएगा, तो ये बहुत झंझट हो सकता है डिजीज से, कैरी स्पाइन जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं।
0: अंत में एक सही सलाह उन लोगों के लिए जो रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हैं और इस समस्या से जूझ रहे हैं।
1: मैं तो यही कहूंगा कि अगर देखे कि दो चार दिन से ज्यादा बैक एक हो रहा है या लो बैक एक हो रहा है, तो जरूर डॉक्टर से परामर्श ले और जो जांच है उसको करवा ले, या डॉक्टर्स के साथ बात करके अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है फिर भी एक बार बात कर ले जरूर।
0: डॉक्टर साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियां दी, उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कारण और निदान विषय पर। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जिनसे बातें कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ हमारा आज का स्वास्थ्य चर्चा का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।
1: परिवार घर में बिजली बनाना, वही बिजली बेचकर हमारे गांव एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव।

0: विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको को 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी, बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे

0: जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वे दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड का पक्ष मजबूती से रखेंगे। केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सांसद विद्युत वर्ण महतो की मौजूदगी में हुए इस निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि वन विभाग की क्लियरेंस मिलते ही काम में और तेजी आएगी। यह परियोजना 2027 तक पूरी होगी, जिससे मानगो वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।
2: एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से जाम की समस्या का निजात मिलेगा। पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि 26 के लास्ट में और 27 की शुरुआत में बनके चालू हो जाएगा। मात्र 1 किलोमीटर फॉरेस्ट क्लियरेंस राज्य सरकार नहीं दे रहा है, जिसके चलते परेशानियां हो रही है।
1: झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 मामले में राज्य सरकार की संशोधन याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 30 जून तय की है। साथ ही कैवियट दायर करने वाले पक्षकारों को याचिका की सॉफ्ट कॉपी देने का आदेश दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ के आदेश में संशोधन के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के नए अध्यक्ष का गठन कर दिया गया है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने चिकित्सा शिक्षा मद में 10 करोड़ 70 लाख का बजट जारी किया है। इसमें से 3 करोड़ 60 लाख राज्य के 6 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और राजकीय फार्मेसी संस्थान के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित है। बाकी राशि का उपयोग चिकित्सा संस्थानों में बिजली, पुस्तकालय, भवन मरम्मत, नए वाहनों की खरीद और बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश, एंटी रेबीज और अन्य जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए निर्देश दिए हैं। मौसम जनित बीमारियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी रखने और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुकी दवाओं की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। चतरा महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम का समापन हो गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस संयुक्त कार्यक्रम में 60 शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा और AI का प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने कहा कि आने वाला समय विकसित भारत 2047 और AI का होगा। उन्होंने घोषणा की कि अगले चरण में विश्वविद्यालय के 50 शिक्षक विशेष प्रशिक्षण के लिए BHU जाएंगे और भविष्य में 1 लाख छात्र छात्राओं को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी का नामांकन रद्द करने की मांग पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा विधानसभा के सामने प्रदर्शन करने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे संवैधानिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया।
3: हमारे कार्यकर्ताओं को विधानसभा के गेट के बाहर रखने का काम किया वहाँ का प्रशासन ने, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब विधानसभा के अंदर घुसे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भेदभाव की राजनीति प्रशासन करना बंद करे। ये आरोप की जिम्मेवारी है कि बिना दबाव में आए जो सही है उसको सही करें, जो गलत है उसको गलत करने का काम करें।
1: इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव

0: तो कमलेश और झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन में कई त्रुटियां होने के बावजूद उसे रद्द नहीं किया गया। रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर नेताओं ने निर्वाचन आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए इस मामले को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास ले जाने की बात कही।
1: मध्य प्रदेश में हमारे मीनाक्षी नटराजन जो उम्मीदवार थे उनको 15 मिनट में जब त्रुटि पाई गई तो उन्हें रद्द किया गया, और यहाँ पर हमारे द्वारा जो आपत्ति की गई उससे 24 घंटा का समय दिया गया, उसमें कई त्रुटियां थी।
0: धनबाद के टाउन हॉल में झामुमो ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया। केंद्रीय सचिव विनोद पांडे और टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को आगामी SIR और मतदाता सूची पुनरीक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। विनोद पांडे ने बताया कि 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान से पहले बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना और एजेंटों को प्रशिक्षित करना बेहद जरूरी था।
2: आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना BLA 2 और बूथ स्तर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कैसे करेंगे, इन सारे विषयों पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। जो 30 तारीख से SIR की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आप अपने बूथ पर किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य के 9 जिलों में आज से 14 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गुड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में कहीं कहीं तेज बारिश होने की आशंका है। इस मौसम बदलाव को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। रांची के JSCA स्टेडियम में झारखंड T20 लीग का रंगारंग आगाज हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले कल देर शाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने चमचमाती ट्रॉफी का अनावरण किया। आज मैदान पर दो रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहले मैच में छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से होगी, जबकि दूसरे मैच में रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड से राज्यसभा चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन वैध होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कांग्रेस की आपत्ति खारिज, नाथवाणी मैदान में कांग्रेसियों ने धरना दिया तो भाजपा कार्यकर्ता भी पहुंचे विधानसभा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 4 में से जिन 3 नामों पर लोकभवन को थी आपत्ति वही बनाए गए सूचना आयुक्त। हिंदुस्तान के शब्द हैं, जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड अब CEO के डिजिटल हस्ताक्षर से होंगे प्रमाणित। दैनिक जागरण लिखता है, 108 एम्बुलेंस सेवा में लापरवाही पर 2 चिकित्सा पदाधिकारी निलंबित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रखेंगे झारखंड का पक्ष। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने जमशेदपुर में NH-33 एलिवेटेड कॉरिडोर का लिया जायजा, कहा 2027 तक पूरा होगा काम। स्नातक शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट का नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश, 30 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। राजधानी रांची, धनबाद और दुमका सहित 9 जिलों में आज से 14 जून तक तेज आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और रांची में शुरू हुई झारखंड T20 लीग में आज छोटा नागपुर रॉयल्स की भिड़ंत धनबाद डायमंड से और रांची टाइटंस का मुकाबला संथाल स्ट्राइकर्स से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आकाशवाणी का ये रांची।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

अपनी ट्यून क्या है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब हम हाजिर हैं फिल्म संगीत लेकर। दोस्तों सुबह की जब पहली किरण हमारे चेहरे को छूती है तो दिल किसी अपने की दी हुई दुआओं और उसकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हो उठता है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहरबानियाँ, जिनका साथ हमारी सोनी जिंदगी को उजाले से भर देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बुझा हुआ दिया किसी पावन आरती की लौ से जगमगा उठा हो।

दोस्तों कहते हैं कि जुबान झूठ बोल सकती है, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कभी कभी किसी की आंखों का एक छोटा सा इशारा एक सूनी और बेजान जिंदगी को जीने का एक बड़ा बहाना दे जाता है।

आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपने सुना फिल्म वंदना और नई रोशनी के गाने। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। गीतकार थे अनजान और मजरूह सुल्तानपुरी। संगीत निर्देशन था रवि और मदन मोहन का। इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं पूरा होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की और ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि एनडीए सम्मेलन में श्री मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप के इतिहास में पहली बार 48 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आपके साथ हम जुड़ते हैं सुरंजना लेकर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान,
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
5: डॉक्टर,
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
5: हेलो डॉक्टर,
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
5: हेलो डॉक्टर।
7: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरंजना। आज के कार्यक्रम सुरंजना में आप सुनेंगे एक ही गायक को।

आज के कार्यक्रम सृंजना में एक ही गायक को आप सुनेंगे और आज हमारे साथ वो आवाज़ है जो सीधे रूह को छूती है। श्रोताओं, कानपुर के गलियों से निकलकर मुंबई के समंदर तक का अंकित तिवारी का सफ़र इतना आसान नहीं था। उन्होंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत सीखा और जब वो गाते हैं तो उनकी मेहनत साफ सुनाई देती है।

दोस्तों अंकित तिवारी सिर्फ उदास या संजीदा गाने ही नहीं गाते, बल्कि जब वो थोड़ा सा सूफी और थोड़ा सा मॉडर्न टच मिक्स करते हैं तो कमाल का म्यूजिक बनता है।

आज के कार्यक्रम सुरंजनामी श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अंकित तिवारी की आवाज़ में कुछ गाने। कहते हैं कि मोहब्बत में जुदाई भी मोहब्बत का एक हिस्सा है, और जो इस दर्द को सह गया वही असली आशिक है।

आज के कार्यक्रम में सुरंजना में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वो फिल्में थी एक विलन, आशिकी टू, बागी और रुस्तम। गीतकार थे मनोज मुंतशिर, संदीप नाथ और अभेंद्र कुमार उपाध्याय। संगीत निर्देशन था अंकित तिवारी का ही। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम सुरंजना में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में हम हाजिर होते हैं शास्त्रीय संगीत लेकर।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870001424।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे राग गुजरी तोड़ी पर आधारित सरोद वादन। कलाकार है अमान अली वंगस।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग गुजरी तोली पर आधारित सरोद वादन अमान अली वंगस से। इसी के साथ हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य

0: कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This Governing Council meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the Inclusive Human Development Framework. Prime Minister Narendra Modi says aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said National Democratic Alliance has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. In his address, Mr. Modi said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: In his address, the Prime Minister also said, at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. The Indian Chamber of Commerce (ICC) plans to facilitate investments worth over one lakh crore rupees in West Bengal through its member companies, reflecting growing industry confidence in the state's economic potential and growth prospects. The proposal was discussed during a meeting in New Delhi between an ICC delegation led by its president, Brijbhushan Agarwal, and Union Minister Jitendra Singh. The chamber said West Bengal is witnessing renewed optimism and positive momentum, which could help accelerate economic growth and strengthen its position as an attractive destination for investment. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said that India's ties with Bulgaria are long-standing and consistent, and the task for both countries now is to reshape them into a more dynamic and forward-looking relationship.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सिट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 आज रात से शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा दोनों देशों के नागरिकों के हित में सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के संदेश पर कहा कि वे भारत और मलेशिया के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को बेहद महत्व देते हैं। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भारत कनाडा साझेदारी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के संदेश के जवाब में कहा कि भारत और इसराइल के बीच मित्रता आने वाले वर्षों में और अधिक मजबूत होगी। विदेश मंत्रालय ने कल ओमान के तट के पास भारत के वाणिज्यिक जहाज सिट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। घटना के बाद मंत्रालय ने अमेरिका के उपराजदूत जेसन मिक्स को तलब किया है। जहाज पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 सदस्यों के लापता होने की खबर है। भारत ने क्षेत्र में जहाजों पर हो रहे हमलों की लगातार घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें बेहद चिंताजनक

0: बताया है। इस बीच भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और शांति के लिए बातचीत की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के संचालन की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश अब इन संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप दें। डॉ जयशंकर ने बुल्गारिया के विदेश मंत्री विलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने बताया कि बैठक में तीन मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें भारत और बुल्गारिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए सहयोग शामिल हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद 25% से अधिक की वृद्धि है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका में वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई महीने में बढ़कर 4.2% हो गई है। ये पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक है। ये वृद्धि मुख्य रूप से ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के बाद ये दर तेजी से बढ़ी है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अप्रैल की तुलना में कीमतों में 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास जताया है कि जैसे जैसे होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए तेल की पूर्ति सामान्य होगी, मुद्रास्फीति में कमी आएगी। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजा की करीवा में एक रिएक्टर को फिर से शुरू कर दिया है। यह कदम वैश्विक तेल संकट के बीच बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। ये संयंत्र जापान के उन कई परमाणु संयंत्रों में शामिल है जहां प्रयुक्त ईंधन के कूलिंग पूल लगभग भरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। उद्योग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कुछ संयंत्रों में अगले 5 वर्षों में क्षमता पूरी हो सकती है। 2011 में फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के बाद जापान के 54 में से केवल 15 रिएक्टर ही फिर से शुरू किए जा सके हैं। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के कारण 3 रिएक्टरों में मेल्टडाउन हुआ था और लगभग 1,60,000 लोग विस्थापित हुए थे। कनाडा की सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसके अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रस्तावित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यह साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित है, तभी उन्हें छूट मिल सकेगी। विधेयक में आत्महानि को बढ़ावा देने वाली, हिंसा या घृणा फैलाने वाली तस्वीरों जैसी हानिकारक सामग्री पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अंतर्गत कनाडा में एक डिजिटल सुरक्षा आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया के साथ अब कनाडा भी उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग पर आयु आधारित प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत और ताजिकिस्तान ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग तथा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। भारत ताजिकिस्तान संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार, निवेश और बाजार पहुंच पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये बात उन्होंने वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक में उद्घाटन भाषण में कही। बैठक की सह अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मोहित यादव और ताजिकिस्तान के आर्थिक विकास और व्यापार उपमंत्री नूरुद्दीन जोदा अहलुद्दीन ने की। श्रीलंका के लोक सुरक्षा मंत्री आनंद विजयपाला ने कल संसद में कहा

0: के पूर्व खुफिया सेवा प्रमुख सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुरेश सल्ले के खिलाफ 2019 में ईस्टर संडे पर हुए बम धमाकों से जुड़े होने के पर्याप्त सबूत जुटा लिए गए हैं। इनमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। विजयपाला ने आरोप लगाया कि सल्ले को हमलों की पूर्व जानकारी थी। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
1: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले के बाद अमेरिका के उप राजदूत को तलब किया। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत के बुल्गारिया के साथ संबंध दीर्घकालिक और स्थिर है और फीफा विश्व कप आज रात से शुरू। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विश्व दर्पण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
5: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।
6: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
7: हेलो डॉक्टर।
6: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात

बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जो जीता वही सिकंदर। आपने सुना इस फिल्म का गाना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के रचे इस गीत को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल को फिल्म काबिल में। मनोज मुंतशिर की रचना थी, धुन राजेश रोशन का था। अब आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, ऑल इज वेल फिल्म से। अरिजीत सिंह के गाए इस गीत को रचा है शब्बीर अहमद ने, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। गीतों भरे इस सफर का अगला नगमा सुनवाते हैं पीके फिल्म से। शान और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, बोल स्वानंद किरकिरे के हैं और संगीत शांतनु मोइत्रा का है।

और अब लीजिए सुनवाते हैं अगला गाना फिलहाल फिल्म से। के एस चित्रा और रूप कुमार राठौर की आवाज़ें हैं, संगीत अनु मलिक का है और गीत ले रचा है गुलजार ने।

और अब लीजिए सुनवाते हैं अगला गीत पाप फिल्म से। राहत फतेह अली खान की आवाज़ है, अमजद इस्माइल अमजद ने इस गीत को रचा है और धुन शाही का है।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनवाते हैं ये गाना, जोड़ी क्या बनाई वाह वाह राम जी फिल्म से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, देव कोहली की रचना है, धुन आनंद राज आनंद का है।

0: इस गाने के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं पूरा होता है।
1: हमारा अगला कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर आप सुनेंगे इसी चैनल पर।
0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर

करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि रामप्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये अमर पंक्तियों की रचयिता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज हम कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नायक, क्रांतिकारी कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जी हाँ, उनका नाम सुनते ही मन में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दी। उनका जन्म आज ही के दिन 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। बचपन से ही वो पढ़ाई लिखाई में तेज थे। घर पर उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा सीखी, साथ ही वे आर्य समाज से गहराई से जुड़े रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों और भाई परमानंद जैसे क्रांतिकारी विचारकों ने उनमें देशभक्ति की चिंगारी भरी। बिस्मिल उपनाम उन्होंने इसलिए अपनाया क्योंकि इसका अर्थ होता है घायल या व्यथित। वे न सिर्फ क्रांतिकारी थे बल्कि एक बेहतरीन कवि, शायर, अनुवादक और लेखक भी थे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत मैनपुरी षड्यंत्र से की थी। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है काकोरी कांड, और इस घटना ने पूरे ब्रिटिश भारत में हलचल मचा दी। पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी कविताओं में सरफरोशी की तमन्ना सबसे प्रसिद्ध है, और ये कविता अदालत में उन्होंने के साथियों ने सामूहिक रूप से गाई थी। अन्य रचनाओं में मेरा जन्म, स्वदेशी गीत में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों में लिखा। श्रोताओं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं।

आकाशवाणी के जमशेदपुर के केंद्र से नमस्कार। जमशेदपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कार्यक्रम के साथ मैं आपकी दोस्त गीता। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। श्रोताओं, ये दिवस खेलों की शक्ति, बच्चों के विकास, स्वास्थ्य, समावेशन और शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हर साल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है और पहली बार ये दिवस 11 जून 2024 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के खेलने के अधिकार, उनके शारीरिक

मानसिक विकास और समग्र कल्याण पर आधारित है। श्रोताओं, हम जानते हैं कि खेल से बच्चों में अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ता है। खेल सभी को बिना भेदभाव के जोड़ता भी है, साथ ही शारीरिक गतिविधि से मोटापा, तनाव और कई सारी बीमारियां भी कम होती हैं। इस तरह से देखा जाए तो खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम सब बच्चों को खेलने का पूरा अधिकार दें और उन्हें खेल के मैदान की ओर प्रोत्साहित करें।

चक दे इंडिया का फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना, सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट और मरियन डिक्रूज की आवाज़ों में। जयदीप साहनी ने गीत लिखा था और धुन बनाई थी सलीम सुलेमान ने।

श्रोताओ, हर साल आज ही के दिन राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस यानी नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया जाता है और ये दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो दूसरों के जीवन को सुंदर, खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाने में योगदान देते हैं। और इस दिवस का उद्देश्य यही है कि जीवन को सुंदर बनाने वाले लोगों, माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, स्वयंसेवी को सम्मानित करना, लोगों को प्रेरित करना कि वे छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं, बाहरी रूप से आगे बढ़कर आंतरिक सौंदर्य जैसे करुणा, विनम्रता, मदद को महत्व देना इसका उद्देश्य है। सच है श्रोताओं, सच्चा सौंदर्य बाहर नहीं, अंदर हमें दिखाई देता है। हमारा जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं, परिवार और समाज में प्रेम बांटते हैं, कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हैं और उम्मीद जगाते हैं। और इसी भावना से आज का ये दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम खुद के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाएं।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र थे गीतकार और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
4: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
3: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
4: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल हुआ पूरा और अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। और श्रोताओ, बात उस ऐतिहासिक पल की जिसने पूरी दुनिया की सुनने की आदत को बदल डाली। जी हाँ, आज ही के दिन 11 जून 1935 को न्यू जर्सी के अल्पाइन में एक साधारण सा दिन नहीं था। उस दिन अमेरिकी आविष्कारक एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग ने दुनिया को पहली बार फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM रेडियो का सार्वजनिक प्रदर्शन किया और ये वो पल था जब रेडियो की दुनिया में क्रांति आ गई। श्रोताओ, आरंभ में रेडियो पर सुनने में लगातार खटखट, बिजली की गड़गड़ाहट और शोर शराबा रहता था, लेकिन आर्मस्ट्रांग ने सोचा कि क्यों ना आवाज को और साफ सुथरा बनाया जाए और फिर उन्होंने फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तकनीक विकसित की। इसमें सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को बदलकर आवाज भेजी जाती है जिससे स्टैटिक और नॉइज लगभग खत्म सा हो जाता है और नतीजा क्रिस्टल क्लियर हाई फिडेलिटी साउंड जैसा कि आज हम FM पर सुनते हैं। बता दें श्रोताओं कि एडविन आर्मस्ट्रांग सिर्फ 20 साल की उम्र में ही रेडियो इंजीनियरिंग के जीनियस साबित हो चुके थे। उनका सबसे बड़ा योगदान FM था। साल 1933 में उन्होंने इसके पेटेंट करवाए और साल 1935 में अल्पाइन न्यू जर्सी में अपना लेबोरेटरी सेटअप करके पहला पब्लिक डेमो दिया।

जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया कि साल 1933 में अमेरिकी आविष्कारक एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग ने एफएम की पेटेंट कराए और साल 1935 में अल्पाइन न्यू जर्सी में अपना लेबोरेटरी सेटअप करके अपना पहला पब्लिक डेमो दिया था। और उस प्रदर्शन में इंजीनियरों और श्रोताओं ने जब एफएम पर संगीत सुना तो वे चकित हो गए। और इतना ही नहीं, एक रिपोर्टर ने ये लिखा, अगर आंखें बंद कर ले जाए तो लगेगा संगीतकार कमरे में ही बैठा है। श्रोता, एफएम ने न सिर्फ साउंड क्वालिटी बदली है बल्कि रेडियो को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है। बाद में आर्मस्ट्रांग ने अल्पाइन में अपना प्रसिद्ध टावर भी बनाया जहां से पहला एफएम स्टेशन प्रसारित हुआ। और आज देखा जाए तो आज पूरी दुनिया एफएम रेडियो का इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो संगीत हो, न्यूज़ हो या फिर इंटरटेनमेंट। आज 11 जून का दिन, इस यादगार तारीख पर हम एडविन आर्मस्ट्रांग को सलाम करते हैं।

और अब कार्यक्रम में चर्चा उन व्यक्तित्वों की जिनकी पुण्यतिथि के रूप में आज के दिन यानी 11 जून को मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज के दिन हम याद कर रहे हैं घनश्याम बिड़ला को, जो एक भारतीय व्यापारी और बिड़ला परिवार के सदस्य थे। साल 1919 में 5 मिलियन के निवेश के साथ बिड़ला ब्रदर्स लिमिटेड का गठन किया गया था। साल 1926 में वे ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए और साल 1932 में दिल्ली में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष बने। 11 जून 1983 को 89 वर्ष के आयु में उनका निधन हो गया। आज उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। साथ ही श्रोताओं, आज के दिन हम याद कर रहे हैं एक प्रमुख भारतीय लंबी दूरी के तैराक और व्यवसायी मिहिर सेन को, जिन्होंने साल 1958 में डूवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को 14 घंटे 45 मिनट में तैर कर पार किया। वो एक कैलेंडर वर्ष 1966 में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले पहले व्यक्ति थे। इस अभूतपूर्व उपलब्धि ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दूरी के तैराक के रूप में जगह दी। आज ही के दिन साल 1997 को कोलकाता में 66 वर्ष के आयु में उनका निधन हो गया। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

यारिया फिल्म का ये गाना था यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कर की आवाज़ में, गीत और संगीत था यो यो हनी सिंह का। और अब बात कार्यक्रम में उस अनाज की जो अब थोड़े ही दिनों में हमें आसानी से सड़क के किनारे चौराहे पर मोड़ पर दिखाई देगी। जी हाँ, आपने ज़रूर अनुमान लगाया होगा श्रोताओं, वही जो बारिश के मौसम में चूल्हे में भुनकर मक्खन नमक मसाला लगाकर खाने में हमें बेहद आनंद आता है। जी हाँ, वो है भुट्टा। आज हम इसी अनाज के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज है राष्ट्रीय भुट्टा दिवस। श्रोताओं, मक्का या भुट्टा दुनिया के सबसे पुराने अनाजों में से एक है। हम अपने देश में इसे मक्का कहते हैं और ये हमारे किसानों की खुशहाली का प्रतीक है। आज के दिन नेशनल कॉर्न डे के रूप में मनाया जाता है, जहां हम भुट्टे के स्वाद, पोषण और महत्व के बारे में याद करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, भरपूर फाइबर से भरा ये अनाज हमारा पेट भी स्वस्थ रखता है। विटामिन ए, बी, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एनर्जी का अच्छा स्रोत है। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसी जगहों पर बड़े पैमानों पर ये भुट्टा जो है उगाई जाती है और इसे हम भूनकर ही नहीं बल्कि कई तरह से खा सकते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न चाट, सब्जी, पॉपकॉर्न, कॉर्नफ्लेक्स और सूप के रूप में। इस तरह से श्रोताओं, भुट्टा सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य का भी हिस्सा है।

दावते इश्क, इसे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। जावेद अली, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ों में कौसर मुनीर ने गीत लिखा और धुन बनाई साजिद वाजिद ने।

और जैसा कि शतः मौसम में तापमान जो हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव जारी है, और आज ऐसे विषय पर हम अब बात करेंगे जो हमारे इस मौसम में आने से पहले बेहद ज़रूरी है। जैसे कि जून महीना को हम मलेरिया रोधी महीना के रूप में जानते हैं, और अब जो है समय है थोड़े ही दिनों में बरसात जो है हमें दस्तक देने वाली है, और इस महीने का उद्देश्य भी यही है, मलेरिया से बचाव, जागरूकता फैलाना और मच्छरों के प्रजनन को रोकना, ताकि हम एक स्वस्थ और मलेरिया मुक्त भारत बना सकें। श्रोताओं, मलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जो एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द, उल्टी और थकान इसके मुख्य लक्षण हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है, पर अब के समय में देखा जाए अगर हम थोड़ी सी सतर्कता बरतें तो मलेरिया को पूरी तरह से रोक सकते हैं। छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है, जैसे कि अपने घर के आसपास पानी जमा होने ना दें। गमलों, टायरों, बाल्टियों, कूलर और छत पर जमा पानी को हर हफ्ते खाली करें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। घर के दरवाजे खिड़कियों पर जाली लगवाएं। लंबी बाजू के कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का ज़रूर उपयोग करें, और बुखार आने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर मलेरिया टेस्ट करवाएं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखें तो इस रोग से हम ज़रूर निजात पा सकते हैं।

थ्री इडियट्स फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे थे गीतकार और संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में चलते चलते आपको मौसम का हाल बताते चले। आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस।

0: नमस्कार जमशेदपुर।
1: नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा,

0: उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आपने सुनी। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:05 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। शीर्षक गीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे बस थोड़ी ही देर में।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शीर्षक गीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में एक खास शब्द जादू की बातें। जादू, जी हाँ, ये शब्द अपने आप में एक अनोखा आलम लिए हुए है। ये वो एहसास है जो दिल को छू जाए, मन को मोह ले और हमें किसी और ही दुनिया में ले जाए। और बात जब फिल्म संगीत की होती हो तो ये जादू और भी गहरा हो जाता है। आज हम कुछ ऐसी ही गीतों पर चर्चा करेंगे और जादू शब्द को अपने बोलों, संगीत और भावनाओं में जो समेटे हुए हैं, ऐसे ही गीतों की आज हम आपको सैर करवाएंगे।

दोस्तों, जब जादू शब्द से जुड़ा कोई गीत हम सुनते हैं तो कभी कभी प्रेम और डर के मिले जुले जादू को ये शब्द बयां करता है, तो कभी प्रेम की उस जादुई कशिश को बयां करता है जैसे दो दिल बिना कुछ कहे पास आ जाती है एक दूसरे के पास।

सच है दोस्तों, हम जादू शब्द को फिल्मी गीतों के जरिए सुनते हैं, महसूस भी करते हैं और ऐसा लगता है हमें कि हर गाना अपने आप में एक जादुई कहानी लिए हुए है जो हमें प्रेम, रहस्य और आकर्षण की दुनिया में ले जाता है। इन गीतों का जादू ही ऐसा है कि ये समय और पीढ़ियों की सीमाओं को पार कर हर दिल को छू लेता है।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शीर्षक गीत, और इस कार्यक्रम में आज हम जादू शब्द से जुड़े गीतों को सुनवा रहे हैं आपको। श्रोताओं, जादू शब्द मन में एक अनोखी चमक के साथ एक अनकही कहानी को जन्म देता है। चाहे प्रेम का जादू हो, संगीत का जादू हो, प्रकृति का जादू हो, ये शब्द हर रूप में जीवन को बेहद खूबसूरत बनाता है।

आज के शीर्षक गीत कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें, जिन फिल्मों के गीतों को आज के कार्यक्रम में आपने सुना वे थे लूटमार, डर, गुलाम और पापा कहते हैं। आवाज़ें थी आशा।

भोसले, उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीत लिखा अमित खन्ना, आनंद बख्शी, समीर और जावेद अख्तर ने। और धुन बनाई राजेश रोशन, शिवहरी और जतिन ललित ने। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही शीर्षक गीत कार्यक्रम बस यहीं संपन्न हुआ।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं और आप इस समय हैं हमारी दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। और अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित निहार रंजन बनर्जी का ख्याल गायन राग है मुल्तानी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निहार रंजन बैनर्जी का ख्याल गायन राग था मुल्तानी, और इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन का ठीक 1 बजने

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भू माफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष एसओपी। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली एसएनसीयू और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप संपन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता, कौशल विकास और स्थायी रोजगार सृजन के उपायों पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और शासन से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा केंद्रित है। इस वर्ष का मुख्य विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। राज्य में जमीन कब्जे के बढ़ते मामलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया। सरकार की ओर से बताया गया कि मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने विशेष एसओपी तैयार कर लिया है। अधिवक्ता अत्तानु बैनर्जी ने बताया कि अदालत ने इस एसओपी की समीक्षा करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़े अन्य आवश्यक कदमों के लिए राज्य सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है।
1: एक नियम बनाया गया है, वो सरकार के पास अभी भेजा गया है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते का समय दिया है। जो प्रस्ताव गया है इसको आपको लागू करना है, नहीं लागू करना है, जो भी निर्णय लेना आप 6 हफ्ते के अंदर लीजिए। कोर्ट ने मुझे भी ये कहा है वो उचित कानूनी रूप से वो सुझाव भी हम 10 दिन के अंदर ये वहाँ पर दे दे।
0: राज्य से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार ने नई तकनीक अपनाने का फैसला किया है। अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोषांग की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई कि अधिकांश हादसे वाहनों की तेज गति के कारण होते हैं। इसी को देखते हुए बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी कैमरा एनफोर्समेंट व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। बोकारो के सेक्टर 12 में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लेने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह बोकारो पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन और सेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन हस्तांतरण और बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।
2: 27 मार्च में इसको चालू कर दिया जाए और NMC का जो नॉर्म्स है उस पर हम लोग मार्च तक अप्लाई कर देंगे और पढ़ाई तो है वो अगस्त से ही शुरू होगा। सबसे पहले मेडिकल जो कॉलेज के अंतर्गत हॉस्पिटल है वो चालू करेंगे मार्च के 27 में और उसके बाद पूरा मेडिकल कॉलेज जो है वो करीब करीब जुलाई अगस्त के आसपास चालू।
0: राज्य सरकार ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए रांची सदर अस्पताल को नए ई संजीवनी हब के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया है। इसके तहत राज्य भर के जिला अस्पतालों की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयां ऑनलाइन सदर अस्पताल से जोड़ी जाएंगी, जिससे गंभीर नवजातों की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी। श्रावणी मेला से पहले 25 जुलाई को देवघर बासुकीनाथ 4 लेन शुरू हो जाएगा। 999 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस 45 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन का 80% से अधिक काम पूरा हो चुका है। NHAI के अनुसार रेलवे ओवरब्रिज पर गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा होने के बाद अब निर्माण अंतिम चरण में है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा के लक्ष्मीपुर में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट से 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति शुरू हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित इस 1500 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट से लकड़ियों पर निर्भरता खत्म हुई है और खेतों के लिए जैविक खाद भी मिल रही है। परियोजना की सफलता पर मेंटेनेंस मैनेजर नीतीश राज ने कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव और LPG की आसमान छूती कीमतों के बीच यह आत्मनिर्भर पहल बेहद कारगर साबित हो रही है।
3: तो और हम लोग पाइप से गैस दिए, गैस देने के बाद सुबह शाम जिस तरह हम रेगुलर बेसिस पर जो गैस जलता है उस हिसाब से प्रतिदिन हम लोग गैस जलता है सब वहाँ पे, जिसमें अभी LPG की किल्लत होने के कारण हमारे सबसे वरदान साबित होता है गोवर्धन योजना।
0: बोकारो शहर के सिटी थाना क्षेत्र स्थित दूंदीबाद फल मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 फल दुकानें और कई खटाल पूरी तरह नष्ट हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और BSL की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जमशेदपुर पुलिस ने साक्षी बाजार से लापता मासूम बच्ची आफरीन को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची की तलाश के लिए गठित SIT ने 50 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल कर इस सफलता को हासिल किया। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि मामले में पुलिस ने एक निसंतान दंपति को हिरासत में लिया है।
4: 50 से अधिक CCTV देखे गए और उसका जब वो जो ट्रेन था जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम। इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है तो ये उसको अपने साथ लेकर चले गए।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 125 अंक बढ़कर 74,109 पर और निफ्टी 29 अंक बढ़कर 23,244 पर पहुंच गया था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,38,200 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को आज से राहत मिल सकती है क्योंकि प्री मानसून गतिविधियां तेज होने जा रही हैं। मौसम विभाग ने रांची, धनबाद और देवघर समेत कई जिलों में आंधी, वज्रपात और बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मुख्य मानसून अगले 4 दिनों में संताल परगना के रास्ते राज्य में प्रवेश करेगा। रांची में आयोजित 25वीं झारखंड जूनियर स्टेट शतरंज चैंपियनशिप में बालक वर्ग में तनिष्क कुमार और बालिका वर्ग में कीर्ति कुमारी ने खिताबी जीत हासिल की है। प्रतियोगिता के शीर्ष 4-4 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इसी समारोह में झारखंड अंडर 7 और अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप का भी विधिवत उद्घाटन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक शुरू। विकसित भारत और समावेशी विकास पर चर्चा जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ले रहे हैं भाग। झारखंड हाईकोर्ट ने भूमाफियाओं के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। राज्य सरकार ने तैयार किया विशेष SOP। कोर्ट ने दिया 6 हफ्ते का समय। राज्य के नेशनल और स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार रोकने के लिए लगेंगे स्पीड रिकॉग्निशन कैमरे। गति सीमा तोड़ने पर कटेगा ऑनलाइन चालान। रांची सदर अस्पताल बनेगा राज्य का पहला टेली SNCU और ई संजीवनी हब। ग्रामीण मरीजों को ऑनलाइन मिलेगी विशेषज्ञ सलाह। और रांची में आयोजित झारखंड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप सम्पन्न। बालक वर्ग में तनिष्क और बालिका वर्ग में कीर्ति बनी विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रांची से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:20 और 25 सेकंड हुए हैं और आप इस समय हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
6: ज्ञान विज्ञान
7: इतिहास के पन्नों से,
8: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
5: मौसम का मिजाज,
6: अपने शहर की खबरें,
8: बातों मुलाकातों के साथ
5: सुरीला मनोरंजन
6: और भी बहुत कुछ।
5: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
8: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
5: नमस्कार जमशेदपुर।

आकाशवाणी जमशेदपुर से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सातों सुरों का साज है जिंदगी, और जिंदगी जीने का अपना अपना अंदाज है। बस हम सबको यही कहते चले जाना है कि हम जो जिंदगी जीते हैं खुशियों से जीते हैं, और यही सकारात्मकता हम हर दिन हर समय लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें ये जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। इसी विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये था कार्यक्रम का पहला गाना जिसे हमने लिया खिलाड़ी फिल्म से। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ें थी। अनवर सागर के बोल को सुरों में ढाला जतिन ललित ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना दोस्ताना फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। विशाल ददलानी की आवाज़ है, अन्विता दत्त हैं गीतकार, संगीतकार विशाल शेखर।

102.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और अब इस कार्यक्रम के लिए वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही है, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।

0: Akashvani at 90.
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

गुप्त फिल्म का ये गाना था अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने गीत लिखा और धुन बनाई विजू शाह ने। और अब अगला गाना खट्टा मीठा फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। केके और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं। इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

तुम मिले फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना, नीरज श्रीधर और साथियों की आवाज़ों में। कुमार ने गीत लिखा और धुन बनाई प्रीतम ने।

चिन्मयी श्रीपदा और शेखर राव जियानी के आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हंसी तो फंसी। और श्रोता, इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दोपहर के ठीक 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। आप सुनेंगे दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से।

0: commercial vessel Palau-flagged MT Sotavalo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said bodies of three seafarers have been located and identified. The United States has carried out a second consecutive night of what it described as self-defense strikes against Iranian military infrastructure near the Strait of Hormuz, further escalating tensions in West Asia. Explosions were reported in and around Bandar Abbas and on Keshm Island as the confrontation entered a more dangerous phase. In response, Iran launched missile and drone attacks on several U.S. military facilities across the region, calling them retaliation for the latest American action. Iranian military authorities also declared the Strait of Hormuz closed to commercial shipping and warned that vessels attempting to pass through could be targeted. However, the United States rejected the claim. More from our West Asia correspondent.
1: The military confrontation is now spreading beyond Iran's borders. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it launched missiles and drone attacks against United States military facilities in Bahrain, Kuwait and Jordan in retaliation for the latest American strikes. Iranian state media reported that 12 ballistic missiles were fired at Jordan's Muwaffaq Salty Air Base, with Tehran claiming damage to military facilities and aircraft shelters. However, neither Jordan nor the United States has confirmed those claims. Reports indicate that air defense systems were activated and interceptions were carried out. Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones.
0: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First made-in-India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
4: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
3: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
4: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
3: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
5: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
3: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
5: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
3: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्यवाही में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जोर्दा में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जोर्दान के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जोर्दान या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
6: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
3: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
5: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित दोपहर समाचार बुलेटिन अंग्रेजी और हिंदी में बारी बारी से अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गाना सुनिए, निकाह फिल्म से सलमा आगा की आवाज है, हसन कमाल के बोल को सुर में ढाला है संगीतकार रवि ने।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। और अब कार्यक्रम का अगला गाना नमक हलाल फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं। आशा भोसले की आवाज है, अनजान है गीतकार संगीतकार बप्पी लाहिरी।

0: तुमसा नहीं देखा, इससे फिल्म का टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत साहिर ने लिखा और धुन बनाई ओपी नैयर ने, और श्रोता इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र, और इस समय आप हैं हमारे दिवाकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। श्रोता, हम आपको बता दें हमारी इसी सभा में दिन में 3 बजे सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के फनकार होंगे मेहंदी हसन, सुनिएगा चंद गजलें, समय होगा 3:30। तीन बजकर 45 मिनट पर लोकगीतों के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे अंगिका लोकगीत, कलाकार होंगी विजया भारती झा। कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी का, ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता की और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक के दौरान देश के विकास को रफ्तार देने के लिए समन्वय और सहयोग पर बल दिया जा रहा है। राज्यों ने भी अपनी आवश्यकताओं से केंद्र सरकार को अवगत कराया और विकसित राष्ट्र निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। इस बैठक में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है।
2: जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फेहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी, 12 वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का वो तपस्या का वो इकाला है।
1: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा अब से कुछ देर बाद 2:00 PM खत्म हो जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणब झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों ने चुनावी रणक्षेत्र में डटे रहने का फैसला किया है और किसी ने नाम वापस नहीं लिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद नगर निगम ने क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया, लेकिन एक प्रतिष्ठान ने समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं प्रस्तुत किया, इस कारण उसे सील कर दिया गया है।
3: यहाँ पर बहुत सारे विभाग, भवन, बैंकेट हॉल, लॉजिस है, जहाँ पर 2013 की नियमावली के अनुसार सबको निबंधन कराना है, लेकिन यहाँ पर प्राय देखा गया है कि बहुत सारे जो ऐसे लॉजिस है, विभाग भवन है, उन्होंने निबंधन नहीं कराया, हम लोगों के यहाँ लाइसेंस नहीं लिया। सारे कागजात की जाँच की जा रही है और जाँच करने के उपरांत हम लोग जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी वो करेंगे।
1: मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, दुमका, गुड्डा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़ और साहिबगंज जिले में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। एनजीटी के निर्देश पर झारखंड में बालू खनन, भंडारण और परिवहन पर 15 अक्टूबर तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। मॉनसून में नदियों का जलस्तर और बहाव तेज होने से पर्यावरण और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए राज्य के सभी 444 बालू घाटों में उत्खनन और परिवहन बंद कर दिया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3 बजे हैं और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
1: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
1: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
1: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
1: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है, आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिका

0: की देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पौंडेचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ,
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी

0: का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की

0: की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
3: घर के पास लगा था मेला,

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: ये था NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से। दिन के 3:30 हो रहे हैं और अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की आवाज में चंद गजलें।
1: अदीब साधन पूरी गजल, ये स्केल भी कुछ ऐसा ही है। बुजुर्गों ने अपनाया इसको और ये रंग भी फेड आउट हुआ है।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आज के फनकार है मेहदी हसन।
1: तबसुम साहब ने लिखी है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 3:45 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए अंगिका लोकगीत, कलाकार हैं विजया भारती झा।

लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंगिका लोकगीत, कलाकार थी विजया भारती झा। और इसी के साथ लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश और ठीक 4:02 पर सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश।
1: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य का पक्ष रखा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में पिछले 12 वर्षों में देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्र को भी झारखंड को भी केंद्र सरकार की ओर से देवघर एम्स, हवाई अड्डा, वंदे भारत ट्रेन, विभिन्न सड़क परियोजनाओं और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया है। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। तीनों में से किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 18 जून को राज्यसभा

0: वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, उनको ये सम्मान दिया गया। आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना, उस कार्यरत जवानों की, अफसरों की जहां बाज योगदान, उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा हैं। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल। हाँ, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है, और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामढ़ी में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ? कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है, केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे।

0: जी जी
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
0: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहां थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था
0: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा के लिए। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
0: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
0: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
0: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी,
0: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
0: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
0: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के या भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने बहुत जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सिस्टम लगाया है, हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की तरफ भी जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जवान वहाँ पर खड़ा है वो उस चीज में पारंगत हो चुका है, वो देख रहा है लोगों को आते जाते हुए, उनसे वो पहचान रहा है, वो लगातार नोटिस कर रहा है। उसके अलावा हमारे अपने मैकेनिज्म रहते हैं जिससे हम लोग पता करते हैं, क्योंकि हम परसेप्शन मैनेजमेंट भी करते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है इस तरह की गतिविधियों के बारे में।
0: राइट देन, तो आप अभी CTC में हैं, श्रीनगर। श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहां पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप?
1: बेसिकली जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं। उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ

0: पे कराते हैं।
1: ओके
0: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं, हम वहाँ पे कराते हैं, राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं
1: जी। जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाका है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
0: बिल्कुल ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेशन तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
1: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से है?
0: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
1: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि ये प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
0: ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
0: बहुत प्रिय है।
1: और कोई खास वजह?
0: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
1: जी जी,
0: तो दिल को छूता है ये।
1: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल as far as the playback singing is concerned, the late, the legendary Lata Mangeshkar.

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहां सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहां पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई। बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहां पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से। तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे निकला अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके के कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है। तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी,
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस जिले में हम लोगों को दिया गया था उस जिले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहिबगंज जामतारा और देवघर जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इन्फेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से ही। और जब हमारी मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की, अमरजीत बलिहार सर करके वो आईपीएस ऑफिसर थे। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में, गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहां से खत्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सकें?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, और उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने लिए, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहां पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम

0: काम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांव में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
1: ये सब एसएसबी कर रही है,
0: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए।
1: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है।
0: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार, हम लोगों का ये फ्रीक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
1: जी,
0: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, उनको कभी भी सरकार के द्वारा

0: रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नजदीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहां पे तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है
1: जी
0: उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम दे रहे हैं कि आप बनाइए। जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे, विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा। ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
1: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा? कुछ आपको आइडिया? क्यों वो विकास नहीं चाहते?
0: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज है। 90 का दशक है, वहां पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे।
1: पनिशमेंट
0: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूं संथाल
1: जी
0: परगना में,
1: जी
0: बहुत सीधे साधे लोग
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुंचने नहीं देते थे,
1: जी
0: पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया। और यही इसी से नक्सलवाद वहां पे बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज के उसमें बैरियर लगा दिया। आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
1: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि एक बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
0: हाँ मैं जरूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना
1: जी
0: चाहूंगा कि
1: प्लीज।
0: किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूंगा मैं
1: जी
0: उनका,
1: जी
0: हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी,
1: जी
0: हमारे कमांडेंट सर परीक्षित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का, और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी थे श्री वाईएस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आरसी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई,
1: जी
0: और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर से अपने ही लोगों से एक
1: जी
0: स्मॉल एक्शन टीम करके
1: जी
0: बनाई। और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं हो सकते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान करीब। तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट, जो टैक्टिकल इंट थी। तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इन्फॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो
1: प्रेपरेशन।
0: प्रैक्टिसेस हैं, जो
1: जी
0: हम
1: जी
0: लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे,
1: ओके
0: हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की,
1: जी
0: उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए।
1: ओके
0: और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
1: वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि

0: आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी। शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो, झारखंड जैसे एरिया में थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो। तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखी?
1: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली। ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे। इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं लोग, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया SSB ने, वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
0: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूं आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
1: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशंस में जो टीम्स थी,
0: जी
1: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। और मोटिवेशन तो होता ही है, फोर्स में जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक
0: जी
1: कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहां पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। और
0: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम करें आगे जाके,
1: बिल्कुल
0: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTC में जो ट्रेनिंग आप दे रहे
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है
0: जी
1: ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
0: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया,
0: लगभग
1: हमारे उसमें
0: सभी?
1: सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है,
0: जी
1: और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
0: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जब आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो SSB में, क्या खींच कर लाया आपको SS? कुछ ऐसे ही
1: बिल्कुल
0: मेरे
1: है,
0: अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में?
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है,
0: जी
1: उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है,
0: जी
1: हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है,
0: ओके
1: उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की जरूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है, तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने,
1: बिल्कुल
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं,
0: जी
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में, और
0: पिथौरागढ़ में अरेंज ही होती होंगी
1: बिल्कुल
0: तो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं
1: हाँ,
0: शादी से
1: बिल्कुल,
0: पहले?
1: हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है, तो जब पाता लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप
0: जी
1: वो
0: पत्र,
1: कहिए,
0: ओके
1: तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो
0: ओके
1: मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है, तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पे हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितने जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया है
1: जी।
0: मॉडर्न पढ़ाई है और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, तो उनका रुझान कैसा है? वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है
0: जी।
1: बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं, तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के दे दे स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम हैं हर चीज के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनके सोचना समझना उनका तरीका बहुत अलग रहता है जी।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ। बिल्कुल,
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब है दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं। आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व तो ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास
0: जी,
1: ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है, तो देखिए आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट होती है, तो देहरादून से, अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस आते हैं ना जो भावुक होकर हम लिखते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे को सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुना जा रहा, थाईलैंड से अमोल अंबावणे, अगर मैं आपका सरनेम सही ले रहा हूं, तो वो मैसेज हमें भेज रहे हैं कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमें देश और विदेशों में सुना जाता है। न्यूज ऑन एआईआर ये एक ऐप है, और पृथ्वी पर कहीं पर भी आप हैं जहां पे आपके पास मोबाइल डेटा है और आपको एक्सेस है इंटरनेट का, तो आप हमें सुन सकते हैं। एक और है, सल्यूट सर कर रहे हैं, रंजीत इनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि मैं सीटीसी एसएसबी श्रीनगर से हूँ, सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद कोई।
1: थैंक यू।
0: ऑल राइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं। महेश सिंह जी कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद, विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर, यश गुप्ता लिख रहे हैं, वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों?
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गडाडे हमें पोलैंड से सुन रहे हैं
1: जी।
0: अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूं ललित सर का, सही कह रहे हैं सर
1: जी।
0: ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा, एंड ऑफकोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी, जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है, एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन विमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं,
1: बिल्कुल
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहां पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं एक हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके,
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है, अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है, बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क्स अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को, और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही हैं।
0: ऑलराइट जी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है,
0: बट सुझाव अच्छा है,
1: बहुत अच्छा सुझाव है, और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा, और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए क्यूरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उनमें GNK हुए, तो उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते होंगे।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका ये प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके जी, सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं
1: जी।
0: और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे साथ हैं, वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपसे कि अब आगे की जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में, मैं ये नहीं कह रहा कि SSP सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी लेकिन सर्वेलेंस, वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है, और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स के संग, और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख पाएंगे।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली, लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, AI का जमाना आ गया, आप लोग AI को अडॉप्ट कर रहे हैं SSB में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट ये है कि AI के अपने भी कॉन्स हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे आपकी तकनीक पे नजर तो जरूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नजर रखते होंगे और उन पे हम भी नजर रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं, बिल्कुल
0: चौकन्ने हैं।
1: बिल्कुल
0: सी टी सी श्रीनगर से ही सुन चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह है, ट्रेनिंग आप ही के जहां आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट 29th SID से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को तो क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते जो ये एक वाक्य है इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूं, कमांडो प्रवीण उनमें से एक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहां से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।
1: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था, और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहां जा रहा हूं जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूं।
0: Right then, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
1: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूं जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता
0: ये
1: है।
0: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
1: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
0: Right then, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ, आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया और विकास तथा जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में 18 जून को मतदान होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन आज कोई भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक महिला समेत 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से 76 ग्राम से अधिक ब्राउन शुगर, 63,000 रूपये नकद और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। और मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत 16 जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: हम आकाशवाणी की जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे युवा श्रोताओं को संबोधित उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz और मैं हूं फरहीन आपके अपने कार्यक्रम युवानी के साथ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होने के बावजूद अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल रहे होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हम रोज़ चर्चा तो नहीं करते, लेकिन वे हमारे आसपास हर दिन मौजूद रहती है। कभी किसी की सफलता हमें प्रेरित करती है, कभी कोई खिलाड़ी हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करने का हौसला देता है, तो कभी इतिहास के कुछ पन्ने हमें याद दिलाते हैं कि आज जो आज़ादी हमारे पास है उसके पीछे कितने लोगों का संघर्ष छिपा हुआ है। और इसी सिलसिले में एक सवाल मन में आता है, जब आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं तो क्या हमारा नज़रिया भी उसी गति से बदल रहा है? अगर हम कुछ साल पीछे जाएं और आज के समय से तुलना करें तो निश्चित रूप से बहुत कुछ बदला है। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, अपने करियर बना रही हैं और अपने फैसले खुद ले रही हैं और आज समाज के लगभग हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है? शायद नहीं, क्योंकि बदलाव केवल अवसरों का नहीं, सोच का भी होना चाहिए। आज भी कई बार जब किसी लड़की की सफलता की बात होती है तो लोग कहते हैं, वाह, लड़की होकर इतना अच्छा कर लिया। जरा सोचिए, क्या किसी लड़के की सफलता पर हम ऐसा कहते हैं? यहीं से पता चलता है कि समस्या क्षमता में नहीं, नजरिए में है। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें अपने सपनों तक पहुँचने के लिए घर, समाज और परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। कई बार उन्हें यह समझाया जाता है कि कुछ काम उनके लिए नहीं है, कुछ सपने उनके लिए नहीं है। वहीं अगर हम कॉरपोरेट दुनिया की बात करें तो वहां भी स्थिति पूरी तरह आदर्श नहीं है। महिलाएं आज बड़े बड़े पदों पर पहुंच रही हैं, कंपनियों का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर उन्हें बराबरी के अवसर पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। और यही वह जगह है जहाँ नजरिए में बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण का मतलब केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं है, इसका मतलब है उनके सपनों पर भरोसा करना, उनके फैसलों का सम्मान करना और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर देना। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बेटियों और बेटों के लिए अलग अलग मापदंड बनाना बंद करें, क्योंकि क्षमता किसी की पहचान देखकर नहीं, उसके काम और मेहनत से तय होती है। जब किसी लड़की के सपनों को उतनी ही गंभीरता से लिया जाएगा जितनी किसी लड़के के सपनों को, जब घर और समाज में जिम्मेदारियों को समान रूप से बांटा जाएगा और जब सफलता को केवल सफलता की तरह देखा जाएगा, ना कि लड़की होकर भी जैसी सोच के साथ, तब हम कह पाएंगे कि बदलाव सचमुच आ रहा है। क्योंकि समाज में बदलाव सिर्फ कानूनों से नहीं आता, बदलाव हमारी सोच से आता है, हमारे व्यवहार से आता है और उन मूल्यों से आता है जो हम अगली पीढ़ी को देते हैं। और मुझे लगता है कि इस बदलाव की शुरुआत हम सभी अपने अपने घरों और अपने आसपास के माहौल से कर सकते हैं। इसी सकारात्मक विचार के साथ अब समय है एक खूबसूरत गीत का, आइए सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का प्रेरणादायक गीत चक लैंड दें। इसे लिखा है गया है और गाया गया है कैलाश खैर ने, और इसे संगीत दी है कैलाश खैर, नरेश और परेश ने।

दोस्तों, ज़िंदगी की भागदौड़ में हमें अक्सर बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कभी मौका मिले और हम अपने बचपन की यादों के पन्ने पलटें तो उनमें खेलों की एक ख़ास जगह ज़रूर मिलती है। मोहल्ले की गलियां, स्कूल का मैदान, दोस्तों की टोली और बिना घड़ी देखे घंटों तक खेलना, शायद हम में से बहुत से लोग इन यादों से खुद को जोड़ पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, खेल कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या से दूर होते गए, और यही एक सवाल उठता है, क्या खेल सिर्फ बचपन तक ही सीमित रहने चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खेल हमें सिर्फ फिट नहीं रखता बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख भी देता है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है, धैर्य सिखाता है और यह भी सिखाता है कि गिर कर दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाता है। दोस्तों, आज भारत के खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन हर सफल खिलाड़ी की शुरुआत भी किसी छोटे से मैदान, किसी स्कूल या किसी साधारण अभ्यास से हुई थी। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और ऐसे कई खिलाड़ी इस बात का उदाहरण है कि अगर मेहनत, लगन और विश्वास हो तो सपने सच हो सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि खेल सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, लेकिन सच यह है कि खेल हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, लेकिन खेल हमें एक बेहतर, स्वस्थ और आत्मविश्वासी इंसान ज़रूर बनाता है। और अगर आप में प्रतिभा है, मेहनत करने का जज्बा है और अपने सपनों को पूरा करने का साहस है, तो खेल आपके लिए एक शानदार करियर भी बन सकता है। इसलिए खेलों को सिर्फ मनोरंजन के रूप में मत देखिए। हो सकता है आज मैदान में बिताया गया आपका एक घंटा कल आपकी पहचान बन जाए। दोस्तों, लक्ष्य चाहे खेल का मैदान हो, पढ़ाई हो, करियर हो या फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना, हर उपलब्धि के पीछे एक चीज हमेशा समान होती है और वह है समर्पण। इतिहास के पन्ने भी ऐसे ही लोगों की कहानियों से भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य के लिए हर कठिनाई का सामना किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब ऐसे लोगों की बात होती है तो एक नाम बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। वो नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। आज 11 जून के दिन उन्हें याद करना और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1897 में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, हम सभी ने उनके बारे में पढ़ा या सुना तो जरूर है, लेकिन जब हम उनके जीवन का थोड़ा करीब से समझते हैं तब एहसास होता है कि इतनी कम उम्र में भी कोई व्यक्ति अपने देश के लिए इतना बड़ा सपना कैसे देख सकता है। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। उस समय देश अंग्रेजों के शासन के अधीन था और आज़ादी सिर्फ एक सपना लगती थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते बल्कि उन्हें बदलने का साहस भी रखते हैं। बिस्मिल भी उन्हीं लोगों में से एक थे। उन्होंने ना केवल स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि युवाओं के भीतर देश प्रेम और आत्मसम्मान की भावना जगाने का भी काम किया। काकोरी कांड का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वे केवल एक क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि एक लेखक और कवि भी थे। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि बिस्मिल उनका असली नाम नहीं था, यह उनका साहित्यिक उपनाम था। उस दौर में कई कवि और शायर अपने नाम के साथ एक तखल्लुस रखते थे, क्योंकि रामप्रसाद जी भी कविताएं लिखते थे इसलिए उन्होंने बिस्मिल नाम अपनाया, जिसका अर्थ होता है पीड़ा और समर्पण से भरा हुआ व्यक्ति। शायद यही कारण है कि यह नाम उनके व्यक्तित्व और जीवन के संघर्षों से पूरी तरह मेल खाता है। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, साहस और बलिदान की भावना साफ दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी युवाओं के भीतर जोश और देशभक्ति की भावना जगाती है। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम रामप्रसाद बिस्मिल को आदर पूर्वक याद करते हैं। और अब इसी के साथ वक्त हो गया है एक खूबसूरत गीत का, आइए
सुनते हैं।

आप सुन रहे थे फिल्म राजी का गीत ए वतन। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और इसे अपनी मधुर आवाज दी है रिजित सिंह ने।

0: दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बात कर रहे थे। उनके विचारों को जानने और समझने का अवसर हमें किस माध्यम से मिलता है? कई बार इसका जवाब होता है किताबें। किताबें केवल कागज पर छपे शब्द नहीं होती, बल्कि अनुभवों, विचारों और ज्ञान का खजाना होती है। एक अच्छी किताब हमें दुनिया से परिचित कराती है, नए विचार देती है और कई बार जीवन को देखने का नजरिया भी बदल देती है। आज के डिजिटल दौर में, जहां अधिकांश जानकारी कुछ ही सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है, वहां भी किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है। जानकारी हमें बता सकती है कि क्या हुआ, लेकिन किताबें हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों हुआ और उससे क्या सीखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप पढ़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत बड़ी किताबों से करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार छोटी कहानियों, जीवनी या प्रेरणादायक पुस्तकों से शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, स्वामी विवेकानंद के विचार या फिर प्रेमचंद की कहानियां, ये सभी पुस्तकें युवाओं को नई सोच और प्रेरणा दे सकती है। किताबों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। जितना समय हम उनके साथ बिताते हैं, उतना ही वे हमें समृद्ध बनाती है। लेकिन किताबों के बारे में सिर्फ मेरी ही राय क्यों सुनी जाए? आइए जानते हैं कि हमारे कुछ युवा साथी किताबों और पढ़ने की आदत को लेकर क्या सोचते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम नूरी फलक है। मैंने अभी ही हाल ही में 10वीं पास की है। सच कहूँ तो पहले मेरी पढ़ाई सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि स्कूल बुक्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने को है। अब मैं कभी कभी कहानियाँ, मोटिवेशनल आर्टिकल्स और छोटी छोटी किताबें, जैसे कि साइंटिफिक, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाले किताबें भी पढ़ती हूँ। इससे ना सिर्फ नई चीजें सीखने को मिलती है, बल्कि पढ़ने में भी मजा आने लगता है।
2: मेरा नाम राज है। मुझे पढ़ने का काफी शौक है। मेरे लिए किताबें टाइम पास का नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का जरिया है। जब भी थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, मैं मोबाइल स्क्रॉल की जगह कुछ पन्ने पढ़ना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छी किताब कई बार एक अच्छे दोस्त की तरह होती है। वो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करती है और कई बार मोटिवेट भी करती है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने कम से कम एक किताब जरूर पढ़ूं।
3: नमस्कार, मैं डॉली हूं और कॉलेज स्टूडेंट हूं। आजकल हम ज्यादातर जानकारी मोबाइल और सोशल मीडिया से लेते हैं, लेकिन किताबें पढ़ने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। किताबें किसी भी विषय को गहराई से समझने में मदद करती हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को अपने कोर्स की किताबों के अलावा भी कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है।
0: तो ये थे हमारे युवा साथियों के विचार। सचमुच हर व्यक्ति का किताबों से जुड़ाव अलग हो सकता है, लेकिन एक बात लगभग सभी में समान होती है, किताबें हमें कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाती है। इसलिए अगर आपने अभी तक पढ़ने की आदत नहीं बनाई है, तो आज ही एक अच्छी किताब को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और अब बात करते हैं उन खबरों और घटनाओं की

जो इन दिनों चर्चा में है और जिनसे अपडेट रहना हम सभी के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कृषि केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र के पोषण का मूलभूत आधार भी है। भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E22, E25, E27 और E30 पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। इससे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 कल यानी 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट 5 जुलाई तक चलेगा और इसमें 12 टीमें भाग ले रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच भी शुरू हो चुका है और दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें इस मेगा टूर्नामेंट पर टिकी हुई है। कोल्हान विश्वविद्यालय में 112 युवाओं का चयन राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना NATS के तहत किया गया है। इससे युवाओं को उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के युववाणी कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की हमारी यह मुलाकात आपको पसंद आई होगी। अगर आज की किसी भी चर्चा ने आपको कुछ नया सोचने या सीखने की प्रेरणा दी हो तो हमारा प्रयास सफल माना जाएगा। मैं हूं फरहीन, आपसे विदा लेती हूं। फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने सपनों का ख्याल रखिए। आप सुन रहे थे युववाणी, आकाशवाणी जमशेदपुर, 102.4 MHz से। नमस्कार।

युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने।

0: नमस्कार श्रमिक श्रोताओं, ढलते हुए सूरज को देखकर कभी ये मत सोचिए कि एक दिन कम हो गया, बल्कि ये सोचिए कि जिंदगी ने आपको एक और खूबसूरत शाम तोहफे में दी है। स्वागत है आप सबका FM के 102.4 MHz पर, और आप सबके साथ हूँ आज मैं आपकी साथी मंजू।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
0: श्रोताओं, दिन में जो हुआ जैसा हुआ उसे वही छोड़ दीजिए, अभी तो पूरी शाम बाकी है, मुस्कुराने के बहाने बाकी है, और आपकी जानकारियां आपका मनोरंजन भी तो बाकी है। तो चेहरे पर लाइए एक और प्यारी सी मुस्कान और हो जाइए तैयार ढेर सारी बातों और प्यारे प्यारे गानों के लिए। तो चलिए इस शाम को बनाते हैं बेहद शानदार FM के 102.4 MHz पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कल कारखाने में।

श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि असली जिंदगी चार दीवारों के अंदर या सिर्फ 5 इंच की स्क्रीन में बंद नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे मैदान की मिट्टी में है। जी हाँ, जरा याद कीजिए वो आखिरी वक्त कब था जब आपने अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करने की जगह मैदान में फुटबॉल को किक मारी थी, या कब आपने किसी गेमिंग ऐप पर रन बनाने के बजाय असल जिंदगी में पसीना बहाते हुए एक जोरदार चौका मारा था। श्रोताओं, सच तो ये है कि आज हमारी सुबह सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन से होती है और रात रील्स देखते हुए खत्म। हमारी उंगलियों की तो अच्छी कसरत हो रही है, लेकिन हमारा शरीर और हमारा मन वो धीरे धीरे इस डिजिटल जाल में थकता जा रहा है। हम वर्चुअल दुनिया में तो कई फ्रेंड्स के साथ जुड़े हैं, लेकिन पड़ोस के मैदान में जो दोस्त असली खेल खेल रहे हैं उनसे हम दूर हो चुके हैं।

श्रोताओं, जब हम खेल की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बच्चे, युवा या वो लोग आते हैं जो खेल से जुड़े होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि खेल सभी के लिए जरूरी है, दफ्तर में बैठे लोगों के लिए भी और दिन भर धूप में पसीना बहाने वाले मजदूरों के लिए भी। क्योंकि दिन भर की थकान के बाद शाम को आधे घंटे के लिए भी दोस्तों के साथ खेला गया क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल या फुटबॉल का एक मैच उस शारीरिक थकान को मानसिक सुकून में बदल देता है। इतना ही नहीं, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप मनोरंजन के लिए सिर्फ मोबाइल के स्क्रीन पर डूब जाते हैं तो अकेलापन और बढ़ता है। लेकिन अगर आप शाम को किसी मैदान में उतरते हैं तो खेल उनके हंसने, खिलखिलाने और सारी चिंताएं भूल जाने का जरिया बन जाता है। हाँ, एक बात और, खेल का मैदान वो जादुई जगह है जहाँ कोई बॉस या एम्प्लॉय नहीं होता। जब हाथ में बल्ला और पैर के सामने फुटबॉल हो तो सब सिर्फ खिलाड़ी होते हैं। ये मैदान समाज की हर दीवार को ढहा देता है।

श्रोताओं, जब आप खेल के मैदान में कदम रखते हैं तो आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो कोई भी मोबाइल ऐप या स्क्रीन आपको नहीं सिखा सकती। स्क्रीन पर गेम ओवर होने के बाद हम रीस्टार्ट बटन दबा देते हैं, लेकिन मैदान पर हारने के बाद हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा उठ खड़े होने का हौसला पाते हैं। ये हमें असल जिंदगी के संघर्षों से लड़ना सिखाता है। खेल हमें सिखाता है कि अकेले हम सिर्फ एक खिलाड़ी है, चाहे हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन साथ मिलकर हम एक विजेता टीम है। ये हमें एक दूसरे का हाथ थामना सिखाता है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का ये मौका किसी बड़े बदलाव का इंतजार नहीं कर रहा है। शुरुआत छोटी ही सही, लेकिन आज ही होनी चाहिए। तो शाम को कम से कम एक घंटा नो गैजेट्स टाइम तय करें, फोन को घर पर छोड़ें। जरूरी नहीं कि आप प्रोफेशनल खिलाड़ी बने या महंगे सामान खरीदे। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, गिल्ली डंडा, कबड्डी, दौड़ना या सिर्फ एक लंबी सैर ही सही, जो पसंद हो वो ही करें। अपने बच्चों, दोस्तों, माता पिता और हाँ, अपने आसपास काम करने वाले श्रमिक साथियों, गार्ड भाइयों या कामगारों को भी खेल में शामिल करें। उन्हें भी इस खुशी का हिस्सा बनाएं। श्रोताओं, डिजिटल दुनिया की चमक अच्छी है, लेकिन मैदान की मिट्टी की खुशबू, अपनों का साथ और असली जीत की खुशी का कोई मुकाबला नहीं। तो अपनी जिंदगी को एक नया मौका दीजिए। सुनिए फिल्म नीरजा का ये खूबसूरत गाना और खुद से कहिए, जीते हैं चल।

0: जीते हैं चल।
1: बिल्कुल, हमें जिंदगी को जीना तो चाहिए ही और अच्छे अंदाज में जीना चाहिए। बता दे कि नीरजा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी आप सुन रहे थे कविता सेठ की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने और संगीत से सवारा था इस गीत को विशाल खुराना ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, जैसा कि मैंने शुरू में ही जिक्र किया था कि आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज जब बातें खेल की हो ही रही है तो आपको एक खास बात भी बता दें कि फुटबॉल के दीवानों का सबसे बड़ा इंतजार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, फुटबॉल विश्व कप 2026 का बिगुल बज चुका है और इस बार का रोमांच एक या दो नहीं बल्कि पूरे तीन देशों में फैला हुआ है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर इस बार दुनिया के सबसे बड़े खेल मेले की मेजबानी कर रहे हैं। इस बार का वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है क्योंकि पहली बार 32 नहीं बल्कि दुनिया की 48 टीमें आमने सामने हैं। पूरे 39 दिनों तक चलने वाले इस महामुकाबले में 104 मैच खेले जाएंगे, यानी एंटरटेनमेंट और रोमांच की कोई कमी नहीं होगी। और बता दें कि 11 जून यानी आज मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम से शुरू हुआ ये सफर 19 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के मैदान पर जाकर थमेगा। और श्रोताओं, खेल की इन बातों के बीच आपको और भी जानकारी देते हैं खेल से जुड़ी हुई। जी हाँ, जीवन में खेल और उसका महत्व, इस विषय पर आज हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे हैं कुमार सौरभ। तो आइए सुनते हैं कुमार सौरभ की ये जानकारी।
2: भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, शूटर मनु भाकर, क्रिकेटर विराट कोहली, ऋषभ पंत, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु खेल जगत के वे सितारे हैं जिन पर देश नाज करता है। इनके नाम वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है जो भारत को खेल के क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाता है, वहीं युवाओं को, बच्चों को एक आशा, उम्मीद भी देती है कि खेल की दुनिया में शानदार करियर भी है। जी हाँ, ये खिलाड़ी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैसे खेल से नाता तो सबका ही होता है। अपने बचपन को ज़रा याद कीजिए, कितना मज़ा आता था ना अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी खेलकर न सिर्फ हम रोमांचित होते थे बल्कि एक अलग तरह की एनर्जी का एहसास भी होता था। तभी तो खेल आज हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि खेल से न सिर्फ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है बल्कि इससे हमारे अंदर टीम वर्क, नेतृत्व और अनुशासन जैसे कौशल का विकास होता है। आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा कि खेल टीम में साथियों के साथ सहयोग करना सीखने से लेकर दृढ़ता की शक्ति की खोज तक अमूल्य सबक सिखाता है। जो इंसान खेलता है वो हमेशा फिट रहता है, क्योंकि हम खेल में दौड़ते हैं, बल्ला उठाकर छक्का चौका लगाते हैं, रैकेट उठाते हैं, गेंद फेंकते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का हर अंग काम कर रहा होता है जिससे हमारा व्यायाम भी हो जाता है। और आपने एक बात और गौर किया होगा कि खेलने से हमारा दिमाग शांत होता है, इससे हमें अच्छा लगता है और हमारा मूड बेहतर होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। यानी जब हम खेलते हैं तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। इसलिए तो अब लगभग सभी स्कूलों में खेल को भी शिक्षा के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार भी इसे बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएँ चला रही हैं ताकि खेल को बढ़ावा मिले और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिले। हमारे देश भारत में तो खेल दिवस भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जो एक महान खिलाड़ी थे और जिन्हें मैदान पर उनकी असाधारण क्षमताओं के कारण हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता था, मेजर ध्यानचंद के भारतीय खेलों में योगदान और भारत के लिए हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों सहित अनगिनत उपलब्धियों ने उन्हें देश के खेल इतिहास में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे छोटी उम्र से ही हॉकी में माहिर थे और खेल पर उनकी पकड़ ने उन्हें हॉकी के जादूगर का खिताब दिलाया। मेजर ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी और सामान्य रूप से खेलों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1920 और 1930 के दशक के दौरान वे भारत के हॉकी प्रभुत्व में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1928 एम्स्टरडैम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में भारत के लिए लगातार 3 स्वर्ण पदक उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से थे। खेल दिवस पर खेल और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में कई कार्यक्रम, समारोह और गतिविधियां आयोजित की जाती है। यह एक ऐसा दिन है जब उत्कृष्ट एथलीटों, कोचों और खेल योगदानकर्ताओं को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार सहित पुरस्कारों से सम्मानित और पुरस्कृत किया जाता है। यह आयोजन स्वस्थ जीवन शैली, टीम वर्क, अनुशासन और और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने में खेलों के महत्व की याद दिलाता है। यह दिन एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करने और उनका जश्न मनाने का मंच है जिन्होंने विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह भारतीय खेलों में उनके असाधारण योगदान और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत का सम्मान करता है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। यह दिन भारत में खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देता है। यह व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं को खेलों में भाग लेने, सक्रिय जीवन जीने और फिटनेस को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करता है। युवा एथलीटों को प्रेरित करना। खेल दिवस उत्कृष्ट एथलीटों को कहानियों को उजागर करके युवा एथलीटों को प्रेरित करता है। यह बच्चों को खेल में भाग लेने, लक्ष्य बनाने और अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफलता के लिए प्रयास के लिए प्रेरित करता है। जागरूकता बढ़ाना। यह दिन समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मामले में खेलों के महत्व पर जोर देता है। यह मानसिक और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है और जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य स्थितियों से बचने में खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। खेल टीम वर्क, सम्मान और एकता को प्रोत्साहित करता है जिससे सामाजिक बाधाओं को तोड़ने में मदद मिलती है। खेलों में भाग लेने से विभिन्न पृष्ठकर्मी के लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं जिससे शांति और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। खेल दिवस इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों में खेल और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। इस दिन स्कूल और कॉलेज विभिन्न खेल का आयोजन और प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार असाधारण प्रशिक्षकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट खिलाड़ी को पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को तो भारत रत्न से भी नवाजा गया है। खेल दिवस स्वस्थ जीवन शैली और टीम वर्क को प्रोत्साहित करता है। यह चरित्र निर्माण और नेतृत्व कौशल में खेलों के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह दिन खेल और गतिविधियों के माध्यम से एकता और टीम भावना लाता है। खेल दिवस खेल भावना को अपनाने और शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करने का एक शानदार अवसर है। इस दिन को मनाने और बेहतर जीवन शैली से प्रोत्साहित करने के कई तरीके हैं, जैसे खेल और शारीरिक गतिविधियों में भाग लेना, खेल आयोजन या दोस्तों, परिवारों या सहकर्मियों के साथ आउटडोर खेल आयोजित करना। आप अपने पड़ोस, स्कूल या कार्यालय में खेल गतिविधियों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। स्कूलों और संस्थानों द्वारा इंट्रा स्कूल और इंट्रा कॉलेज खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जा सकते हैं। ये आयोजन, जिनमें रिले रेस से लेकर रस्साकशी टूर्नामेंट तक शामिल है, समुदाय की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली के मूल्य पर जोर दे सकते हैं। निष्कर्ष। खेल दिवस का एक गहरा अर्थ है जो एथलेटिक्स के दायरे से कई आगे तक फैला हुआ है। यह देश के उन एथलीटों को सम्मान देता है जो पहले और आज दोनों ही खेल जगत में खेल चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही मंचों पर बेजोड़ समर्पण, लचीलापन और प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपनी भूमिका की परवाह किए बिना खेल संस्कृति को विकसित और समृद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। आइए हम इस दिन के मूल्य और आदर्शों को पूरे साल अपने साथ लेकर चले और एक स्वस्थ, अधिक एकजुट और अधिक जीवंत राष्ट्र की तस्वीर बुने।
1: जीवन में खेल और उसका महत्व, इस विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे कुमार सौरभ। और बता दें कि इस जानकारी का पुनः प्रसारण अभी आप सुन रहे थे। और श्रोताओं, अब अपनी जानकारियों भरी बातों के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, जब साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी तब ये एक सरकारी अभियान था, लेकिन आज 2026 में ये देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये अब सिर्फ सड़कों की सफाई नहीं बल्कि हमारी सोच की सफाई का आंदोलन है। आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बदलाव साफ नजर आता है। अब हमारे घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग निकलता है। जो कचरा कभी बीमारी फैलाती थी, आज उसी कचरे से वेस्ट टू वेल्थ मंत्र के तहत बायोगैस, बिजली और जैविक खाद बनाई जा रही है। साल 2026 का भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को पीछे छोड़ चुका है। आज हमारे हाथ में प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े और जूट के थैले शान से लहराते हैं। देश के कोने कोने में बने आधुनिक और स्मार्ट शौचालयों ने महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया है। लेकिन श्रोताओं, सफाई कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मिशन का अगला चरण यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अब हमें कचरा मुक्त भारत की तरफ ले जा रहा है। अब हमें सिर्फ अपने घर को ही नहीं बल्कि अपने मोहल्ले को, अपनी सार्वजनिक बसों और ट्रेनों को और अपने पर्यटन स्थलों को भी उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने पूजा घर को रखते हैं। याद रखिए, जब विदेशी सैलानी भारत आते हैं और यहाँ की साफ सफाई देखते हैं तो वो सिर्फ एक सड़क की तारीफ नहीं करते, वो पूरे भारत के नागरिकों के संस्कार की तारीफ करते हैं। तो चलिए, आज हम सब एक बार फिर खुद से वादा करते हैं, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, क्योंकि एक स्वच्छ भारत ही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की नींव है। तो आज से ही, अभी से अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। तो लीजिए सुनिए FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये गाना।

राहत फतेह अली खान की आवाज में फिल्म पाप का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे अमजद इस्लाम अमजद और संगीतकार थे शाही। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम कल कारखाने के आज के अंक को यहीं संपन्न करने का। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में इसी समय। तब तक के लिए मंजू को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हमारे श्रमिक बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कल कारखाने अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को

भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: झारखंड के लोकगीत के अंतर्गत आप सुन रहे थे पंच परगनिया लोकगीत। कलाकार थे राकेश कुमार। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार।

0: विविधाः सूचनाः शैक्षिक सामग्र्यः प्राप्तुं शक्नुवन्ति। सभां सम्बोधयन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् देशस्य सीमाक्षेत्रेषु कश्मीरतः कच्छपर्यन्तम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः प्रसारणसेवायाः विशिष्टाः लाभाः प्राप्स्यन्ते।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रशासनेन एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पाद शुल्कम अपसारितम्। वित्त मंत्रालयेन एकया अधिसूचनया प्रकाशितम् यत् द्वाविंशतितः 30% एथोनॉल मिश्रित पेट्रोल उत्पादम केंद्रीय उत्पाद शुल्क श्रेण्यात् पूर्णतया विमुक्तम्। मंत्रालयेन उक्तम् यत् अस्य शैथिल्यस्य उद्देश्यं भारतीय एथोनॉल मिश्रण कार्यक्रमं सुदृढीकरणमस्ति। 26,000 वर्षस्य फीफा विश्व चषक क्रीडायाः आरम्भः अद्य रात्रौ मेक्सिको नगरस्य ऐतिहासिके एस्टाडियो एर्जेटेका क्रीड़ा गृहे आरभ्यते इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित संस्कृत में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे किसान बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि

मौसम ने ली करवट और ऐसा लगा मानो मानसून ने धीरे से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी। तो चलिए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर करते हैं मानसून का स्वागत, साथ ही स्वागत आप सभी का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में। आज मैं हूं आपके साथ आपका वही जाना पहचाना दोस्त राजेश जुहार। किसान भाई बंधुओं, मानसून आते ही हम तैयारी करने लगते हैं खरीफ फसलों का, ताकि हमारी पैदावार सही हो। किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए, इसी विषय पर आज जानकारी देंगे कृष्ण प्रताप वर्मा। साथ ही हमेशा की तरह विभिन्न विषयों पर होगी आपसे बातचीत और सुनेंगे एक मधुर लोकगीत। तो चलिए करते हैं आगाज कुछ जरूरी बातों के साथ। कृषक बंधुओं, फसलों में संतुलित उर्वरक प्रबंधन का अर्थ है फसल की आवश्यकता, मिट्टी की स्थिति और जलवायु के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों का सही अनुपात और सही समय पर उपयोग करना, ताकि पैदावार अधिकतम हो और मिट्टी की सेहत भी बनी रहे। खेत बचाओ अभियान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी कृषि पहल है, जिसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। देश भर में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक रासायनिक उपयोग को कम करना, मृदा स्वास्थ्य कार्डों का उपयोग करना और विज्ञान आधारित फसल प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है। किसान भाइयों, खेत में उर्वरक डालने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएं, जिससे पोषक तत्वों की कमी का सटीक अनुमान लगाया जा सके। रासायनिक उर्वरकों के अलावा जैविक खाद का भी उपयोग करें। गोबर की सड़ी खाद, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग अपने खेतों में आप कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और पीएसबी का यूज करें। उर्वरक को एक बार में डालने के बजाय फसल की वृद्धि और अवस्था के अनुसार, जैसे बुआई, फूल आने या फलियां बनते समय, अलग अलग किस्तों में दें। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से तरल यानी लिक्विड उर्वरकों को सीधे जड़ों तक पहुंचाएं। नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ाने के लिए नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल करें। इस तरह कृषक मित्रों, हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता और फसल की बेहतर गुणवत्ता के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक जरूरी प्रक्रिया है, जो भूमि को लंबे समय तक उपजाऊ रखने में मदद करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाते रहेंगे और फसल और मिट्टी के अनुसार उर्वरकों का उपयोग भी करेंगे।

0: किसान भाइयों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत परिवार के आकार या सदस्यों की आयु पर कोई सीमा नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, दवाइयां, जांच और सर्जरी जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए एक आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिसके जरिए वे पूरे देश में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से गरीब और कमजोर परिवार के लिए है। इसके अलावा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक इस योजना के पात्र हैं। आप अपनी पात्रता की जांच आयुष्मान भारत PMJAY पोर्टल पर कर सकते हैं। नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में आयुष्मान मित्र की मदद से भी पंजीकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाया जा सकता है। बारिश आते ही किसान खरीफ फसलों की तैयारी करने लगते हैं। खरीफ फसलों की बुआई और तैयारी कैसे की जाए, इसी विषय पर आइए सुनते हैं कृष्ण प्रताप वर्मा से ली गई भेंटवार्ता। इनसे बातचीत कर रहे हैं विवेक आदित्य।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम खरीफ फसलों के बारे में एक जानकारी लेकर के आए हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं कृष्ण प्रताप वर्मा जी, जो कि टाटा स्टील फाउंडेशन में पूर्व में कृषि पदाधिकारी के पद पर कार्य कर चुके हैं और इन्हें कृषि से संबंधित कार्यों का लगभग 40 वर्षों का अनुभव भी है। कृष्ण प्रताप वर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: वर्मा जी, जैसा कि अभी जायद फसलों की कटाई हो चुकी है और खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी चल रही है, हमारे कृषक भाई बहनों के लिए सबसे पहले हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, धान के अलावा भी और क्या क्या मुख्य फसलें इसमें शामिल की जाती हैं?
2: झारखंड की जमीन में वर्षा ऋतु में ही धान के अलावा सब्जियां, दलहनी फसलों एवं तिलहनी फसलों की खेती होती है। वर्षा ऋतु में यहाँ सब्जियाँ, मकई अच्छी उगाई जाती हैं। दलहन में अरहर, मूँग, उड़द और लोबिया, तेलहन में तिल, मूंगफली, सोयाबीन और कुछ कुछ क्षेत्रों में सूरजमुखी भी देखने को मिलती है।
1: जी, जैसे कि अभी बातें हो रही हैं खरीफ फसलों की बुआई की, तो इसके लिए उपयुक्त समय क्या हो सकता है और फिर इसके लिए खेती की कैसी तैयारी होनी चाहिए हमारे किसान भाई बहनों के द्वारा?
2: किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन पाने के लिए जितना संभव हो उसमें तैयारी खेत की अवश्य करनी चाहिए। तैयारी ही नहीं, खेत की तैयारी से लेके फसल की कटाई तक अच्छी देखरेख एवं अच्छे प्रबंधन को ध्यान दिया जाना चाहिए। समय पर बीज डालें, उचित दिनों में पौधों की रोपाई करें, खरपतवार पर नियंत्रण रखें, अच्छे बीजों का चयन करें, अच्छे दुकानों से खरीदें, जो विश्वसनीय दुकान हो वहीं से बीज खरीदें। सबसे जरूरी बीज होता है खेती के लिए, और समयानुसार सिंचाई, निकाई, गुड़ाई, रोग एवं कीटों का उचित प्रबंधन करें तथा उचित समय पर ही फसलों की कटाई करें। बहुत किसान यहाँ पर देखा गया है कि कुछ कच्ची फसलों की ही कटाई कर देते हैं तो उसमें नुकसान होता है, तो निश्चय ही किसान भाइयों को अपने मेहनत का संतोषजनक लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ कमा सकेंगे।
1: जी, तो अगर खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी की अगर बात की जाए तो क्या वर्मा जी मिट्टी की जाँच का भी इसमें महत्व होता है?
2: जी बिल्कुल, महत्व इसलिए होता है कि हमारे पास मान लीजिए उसमें खेतों में नाइट्रोजन पहले से ज़्यादा है तो हम यूरिया कम डालेंगे, फास्फोरस ज़्यादा है तो उससे संबंधित जो खादें हैं उनको कम कर देंगे, और मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी होती है।
1: जी, अब तो बातें हो गई मिट्टी की जांच से संबंधित जानकारी की, और आपके अनुसार ये बात सही भी है कि मिट्टी की जांच बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा हमारा किसान भाई बहनों के लिए कदम होना चाहिए बीजों का चयन या फिर बीजों का उपचार, तो ये दोनों, ये जो बीजों का चयन किस प्रकार होना चाहिए या फिर बीजों का उपचार कितना जरूरी होता है खरीफ फसलों के बुआई के समय?
2: विवेक जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। धान ही नहीं, कोई भी फसल, सब्जी हो, दलहन हो, तिलहन हो, सभी पर कीट एवं रोगों का कारण काफ़ी क्षति होती है और जिनका सीधा प्रभाव उपज पर पड़ता है। किसान भाई मात्र यदि बीज शोधन करके बीजों को की बुआई करते हैं, जमीन मिट्टी की का भी शोधन कर लेते हैं, तो 14-15% उपज जो है वो अपने आप वृद्धि हो जाती है।
1: इसमें कहा जाता है कि वर्षा का पानी काफी महत्व रखता है
2: जी।
1: इसका अर्थ यह है कि सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए या फिर वर्षा का पानी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: झारखंड में देखिए, हम लोग देखे हैं कि सिंचाई का तालाब साधन है और नहरें तो उतनी है नहीं यहाँ पर। नदी से कुछ लोग सिंचाई करते हैं, नालों से कुछ लोग सिंचाई करते हैं, झरने कुछ जगह पर पाए जाते हैं, कुआं से सिंचाई करते हैं। तो ज़्यादातर खेत तो हम ये कहेंगे कि वर्षा पर ही आधारित हैं, लेकिन जो सिंचाई के साधन हैं उसमें धान के अलावा लोग सब्जी का उत्पादन बहुत अच्छा करते हैं और उससे अच्छा लाभ कमाते भी हैं। और सब्जियों में कहेंगे तो बैंगन, टमाटर, मूली, मिर्चा
1: जी,
2: खीरा, ककड़ी, ये सब खेती देखने को मिलती है और लोग लगाते भी हैं। और दलहन में मूंग, उड़द, रहर लगाते हैं और तेलहन में सूरजमुखी होती है, लोबिया होती है यहाँ पर
1: जी।
2: पहाड़ों के बीच बीच में लोबिया लगाते हैं, वो दलहनी फसलों में आती है
1: जी। वर्मा जी, जैसे कि बातें हो रही हैं खरीफ फसलों की, तो धान यहाँ की मुख्य फसल है
2: जी।
1: जो कि देखा जाए तो ये वर्षा पर ही अधिकांशता आधारित होती है
2: जी, जी।
1: तो किसान भाई बहन अपने पहुँच के अनुसार इंटर कल्चर की क्रियाएं भी करते हैं
2: जी जी जी।
1: लेकिन कई बार इसमें लगने वाले कीट और मकौड़ों के प्रकोप के कारण
2: जी
1: उन्हें बृहद स्तर पर नुकसान का भी सामना करना पड़ता है
2: जी, जी।
1: तो अपने नुकसान को कम करने के लिए किसान भाई बहन क्या कर सकते हैं
2: जी? कोई भी बीज उपचारित करके ही मिट्टी में पड़े, इससे बहुत सारी बीमारियां एवं उनके माध्यम से होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। बीज के ऊपर ही उपज की सारी जिम्मेदारी रहती है। कुछ सामान्य कीट एवं रोग हैं जो लगभग सभी फसलों एवं सब्जियों में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि फसल में छेदक, सफ़ेद मक्खी, लाही, लाल पंपकिन बीटल, जो आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि कद्दू बरगीय फसलों पर ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पत्ती मोड़क कीट, फल मक्खी, इन सब की पहचान करके कुछ रासायनिक दवाएँ आती हैं जो क्लोरीपिरिफॉस 20EC, इमिडाक्लोरोपिड, फ्यूराडान आज अनेक दवाएं आती हैं जिनको मिट्टी में, जड़ों में, तनों पर छिड़काव करके बीमारियों से निदान पा सकते हैं। रोगों की बात करें तो आद्र गलन, अगेती झुलसा, पचेती झुलसा, उकठा रोग, तना बिगलन, बांझपन, मोज़ेक बीमारी जो होती है का प्रकोप मुख्य है
1: जी।
2: तो और इनके बचाव के लिए भी अगर बीज का उपचारित कर लिया जाता है तो इसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अच्छे प्रकार के सड़े गोबर खाद, करवेंडा जीम, ट्राइकोडर्मा बिरडी का प्रयोग करने से भी काफ़ी लाभ मिलता है
1: जी।
2: धान में लगने वाले मुख्य कीड़ों में सड़ा कीट बहुत ही नुकसानदायक है। किसान भाई देखे होंगे कि प्याज के जैसा उनका धान का पत्ती हो जाता है और उसमें फिर और बालें नहीं निकलती हैं
1: जी।
2: दूसरा पीला तना छेदक, गंधी कीट, जो कि सभी किसान भाई जानते हैं कि गंधी कीट जब दुधिया अवस्था होती है धान में तो बहुत नुकसान करते हैं। पत्ती मोड़क कीट, धान का भूरा फुदका, हरा फुदका, थ्रिप्स, दीमक धान में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। इन सब के बचाव के लिए क्लोरोपिरिफॉस 20EC, 25EC, साइपरमेथीन 25EC, इमिडाक्लोरोपिड, ये सब दवाएँ छिड़काव करके मिट्टी में मिला करके या पौधों की जड़ों को इन दवाओं में डुबाकर रोकथाम किया जा सकता है। रोपाई करते हैं तो रोपाई के पहले जो चारा उखाड़ते हैं जमीन से, तो उनको हम घंटे भर, डेढ़ घंटे करीब अगर इन दवाओं में डुबा देंगे तो बहुत सारे कीटों और बीमारियों का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है। कुछ दवाएं हैं जो कार्बेंडाजिम, जैसे बेबेस्टीन और ट्राइकोक्लाइजोल और क्लोरोथैलोनील, ये 75 WP या कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये 35EC आता है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी द्वारा, मतलब 2 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोल करके और बीज उपचारित कर लेना चाहिए। तो 2 ग्राम दवा जो है 1 किलो के लिए है
1: जी।
2: और आपका अगर 10 किलो बीजा है तो 20 ग्राम लेंगे और उसमें जड़ों को डुबाकर या छिड़काव द्वारा भी भूरा दाग, ब्लास्ट रोग, झुलसा रोग जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी देखी जाती है, पौधे पीले पड़ जाते हैं, उसकी जो पहचान है कि आपका धान का पौधा पीला पड़ जाता है और बैठ जाता है, बढ़वार कम हो जाती है और सूखे जैसा लगने लगता है, तो इस बीमारी में पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं या कम करती हैं, सूर्य की रोशनी उनके अंदर नहीं पहुंच पाती है। तो इससे बचाव के लिए बीज को शोधन करें और बिचड़ों की जड़ों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम 5 लीटर पानी में मिला करके और 1.5 से 2 घंटा जड़ों को डुबा करके रोपाई करें। यही दवा 20 ग्राम प्रति एकड़ की दर से पौधों पर छिड़काव भी कर सकते हैं और रोगरोधी किस्म भी बहुत सी आ गई है बाज़ार में, तो उनको अच्छी दुकानों से लेकर हम रोपाई कर सकते हैं
1: जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने कि धान और बाकी जो खरीफ फसलें हैं उनमें अगर कीटों का प्रबंधन किया जाए या जिन दवाइयों की चर्चा आपने की है उनका छिड़काव कर किसान भाई बहन अपने नुकसान को कम कर सकते हैं। अंत में हमारे किसान भाई बहनों के लिए खरीफ फसलों में जो कीट प्रबंधन होता है उसके लिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: कोशिश करना चाहिए कि किसान को कभी भी जो भी दवाएं छिड़काव करते हैं उनको हवा के विपरीत में दवाओं का छिड़काव नहीं करना चाहिए, दवाओं को बच्चों से दूर रखना चाहिए, बाकी जो दवाएं बहुत जहरीली होती हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि ना ही प्रयोग करें।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई बहन जो आपके संदेश को सुन रहे होंगे इसका लाभ उन्हें अवश्य मिलेगा। वर्मा जी आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: खरीफ फसलों की बुआई और तैयारी, इसी विषय पर आप सुन रहे थे भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थे कृष्ण प्रताप वर्मा और इनसे बातचीत कर रहे थे विवेक आदि।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भाइयों, आइए अब रुख करते हैं मनोरंजन की ओर। सुनते हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं लता सिन्हा।

आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थी लता सिन्हा। किसान भाइयों, फलों का बाग लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की जांच, सही किस्मों का चुनाव और उचित दूरी की योजना बनाएं। जून के महीने में खेत की गहरी जुताई कर मिट्टी का धूप लगने दें और मानसून से पहले गड्ढे खोदकर जैविक खाद से भर दें। जमीन की मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी उपजाऊ, भुरभुरी और पानी की अच्छी निकासी वाली होनी चाहिए। पुराने खरपतवार, झाड़ियां और पत्थर हटाकर साफ कर लें। हमेशा प्रमाणित नर्सरी से ही ग्राफ्टेड अर्थात कलमी पौधे खरीदें। आम, अमरूद या नींबू जैसे पेड़ों के बीच कम से कम 25x25 फीट या 30x30 फीट की दूरी रखें। जुलाई अगस्त यानी मानसून का समय पौधे लगाने के लिए सबसे उत्तम होता है। गड्ढे के बीचों बीच छोटी खुरपी से उतनी ही जगह बनाएं जितने में पौधे की जड़ आ सके। ध्यान रहे कि पौधे का कलम वाला हिस्सा जमीन की सतह से हमेशा 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर रहे। पौधे को गड्ढे के बीच में सीधा रखकर मिट्टी से दबा दें और तुरंत पानी दे दें।

और अब जानते हैं मौसम का हालचाल। क्षेत्रीय प्रभाग रांची और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा प्राप्त मौसम के संदर्भ में कहा गया है कि जिला पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस सप्ताह भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय और दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज वाली बिजली और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। कल यानी कि 12 जून 2026 को वर्षा 0.8 मीटर रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकती है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 85% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 55% होने की संभावना है। हवा की दिशा होगी दक्षिण से पूर्व की ओर तथा रफ्तार रहेगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे।

किसान भाइयों, बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को गलघोटू, लंगड़ा बुखार, खुरपका, मुहपका और थैनैला जैसे रोगों से बचाव के टीके लगवाने चाहिए। यह टीकाकरण बारिश के मौसम में होने वाले जानलेवा संक्रमणों से मवेशियों की रक्षा करता है। यह बारिश में गाय और भैंस में होने वाली एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में सूजन आ जाती है। यह टीका मानसून आने से ठीक पहले लगाया जाता है और इसका असर एक साल तक रहता है। लंगड़ा बुखार जैसी बीमारी के लिए भी टीका इसी समय लगाया जाता है। बारिश के मौसम में खुरपका मुहपका बीमारी के लिए वायरस तेजी से फैलता है। इससे पशुओं के मुंह और खुरों में छाले हो जाते हैं, जिससे वे खा पी नहीं सकते और दूध उत्पादन बुरी तरह गिर जाता है। यह वैक्सीन हर 6 महीने के अंतराल पर लगानी चाहिए। और चलते चलते आपको बता दें कि वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नया रूप दे रहा है। इसे 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है। यह नया कानून मनरेगा की जगह एक अधिक व्यापक और आधुनिक योजना के रूप में काम कर रहा है। ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय अब 125 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी मिल रही है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत का ये सफर बस यहीं तक। दीजिए अपने दोस्त राजेश को अनुमति। जोहार।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से होगा। सुनेंगे चंद विज्ञापन और विचारों के बाद शाम 7 बजे से प्रादेशिक समाचार।

इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा। झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में झारखंड को केवल खनिज उत्पादक राज्य नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, खेल और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहलों की जानकारी देते हुए केंद्र से विभिन्न परियोजनाओं और संस्थानों के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की बाकी राशि जारी करने, कोयला कंपनियों के बकाया भुगतान, मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के सरलीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड के संसाधनों को मानव पूंजी से जोड़कर राज्य को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भागीदार बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमशेदपुर में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और निर्देशन में राज्यों को पर्याप्त केंद्रीय सहायता राशि दी जा रही है। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत झारखंड समेत देश भर के 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रूपये की सहायता राशि दी जा रही है।
1: निकासी को केंद्र द्वारा यहाँ पर राशन भेजा जाता है।

0: टीबी कैसे दूर करें इस राज्य से, क्योंकि झारखंड में अभी तक लगभग 6,000 से अधिक पेशेंट हैं हमारे। तो मैंने तमाम जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्रियों से मैंने आग्रह किया है कि आपके गांव में यदि कोई पेशेंट है तो उनको आप लोग चिन्हित करें। हम लोग मुफ्त में टीबी का इलाज करते हैं, 1,000 रुपये हम लोग हर मंथ मिलाते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनको देते हैं। जहाँ तक कि हम लोगों ने एक फ्रेंड जो बीमारी टीबी ठीक हो जाता है तो वैसे मरीज को हम लोग गाँव में भेजते हैं। तो आप प्रसार करो कि कहाँ पर आपका पेशेंट है, ये बीमारी जो है लाइलाज बीमारी है, इसे घबराना नहीं है। और भारत सरकार ने कहा था कि 2025 में टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन 2025 हुआ नहीं, हम लोग 2029 में हम झारखंड को टीबी मुक्त झारखंड हम बनाएंगे।
1: राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में आगामी 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम जारी होंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन आज किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। अब झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए झामुमो के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के बीच मुकाबला तय है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाताओं की मैपिंग प्रक्रिया 15 जून तक जारी रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक राज्य के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। 23 मई को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होने के बाद 14 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपनी मैपिंग कराई। श्री कुमार ने अनमैप्ड मतदाताओं से जल्द मैपिंग प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 प्रतिष्ठित लोक कलाकारों को संयुक्त रूप से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इन कलाकारों में बूटन देवी, सोमवारी देवी और सरायकेला खरसावां के छऊ मुखौटा शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्र शामिल हैं। श्री महापात्र ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है।
2: मैं एक पारंपरिक घराना का हूँ, ये मुझे दुख भी लग रहा है कि मुझे बहुत धैर्य मिला हूँ। मैं छो के लिए समर्पित हूँ, छो के लिए काम करूंगा, ये हमारा परंपरा है। 3-4 पीढ़ी हो गया, मेरे बड़े चाचा थे जो सरायकेला के जगन्नाथ मंदिर को जितनी भी मूर्तियां हैं वो बनाए हैं।
1: पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बीच केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्थिर है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई, जिसके आलोक में 1,49,00,000 की डिलीवरी की गई।
3: देश में क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस की सप्लाई स्टेबल है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम क्षमता पर चल रही हैं। पिछले 3 दिनों में 1.40 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स की बुकिंग रिसीव हुई है। इसके अगेंस्ट 1.49 करोड़ डिलीवरी की गई है। अफवाहों से बचें, जहां पर भी संभव हो वहां अल्टरनेट सोर्स का उपयोग करने का प्रयत्न करें।
1: प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जामताड़ा जिले के लोगों, विशेषकर गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जरूरतमंद लोग जन औषधि केंद्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ सस्ती और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, जो गरीबों को बहुत आवश्यकता अनुसार काम कर रही है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करती हूँ।
1: रांची के नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने आज विरोध मार्च निकाला। ग्रामीणों की योजना मुख्यमंत्री आवास घेरने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें मोराबादी में रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि राज्य सरकार विकास के नाम पर किसानों की कृषि योग्य भूमि छीन रही है।
5: रिम्स 2 बने, आदिवासी समाज कभी भी विरोध नहीं किया है। पूरे झारखंड में यहाँ पे आदिवासियों का ही जमीन दिया गया है। 11-12 में भाजपा सरकार इस जमीन को छीन रही थी, उसके बाद शिबू सोरेन जी उनके आह्वान पे ये जमीन को बचाया गया है। अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना है हमारे दिसुम गुरु को, तो ये नगरी का जमीन 227 एक

0: खेतीहारी जमीन को, पूरे आदिवासी समाज को उपहार देने का काम करे।
1: राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ प्री मॉनसून की मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पड़ोसी राज्य बिहार में आज मॉनसून ने दस्तक दी है, इसके राज्य में 2-3 दिनों में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 17 जून तक तेज हवा और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की महिला चयन समिति ने 3 T20 श्रृंखला के लिए आज 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। श्रीलंका दौरे के लिए घोषित 15 सदस्यीय इस टीम में झारखंड की कुमारी पलक का भी चयन हुआ है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से सहयोग की जताई अपेक्षा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने जमशेदपुर में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा केंद्र से राज्य को मिल रहा पर्याप्त आर्थिक सहयोग। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मुक्त झारखंड पर दिया जोर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में प्री मॉनसून बारिश से गर्मी से राहत। पड़ोसी राज्य बिहार में मॉनसून की दस्तक, राज्य में 2-3 दिनों में करेगा प्रवेश। और श्रीलंका दौरे के लिए अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा, झारखंड की कुमारी पलक का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: कोडरमा जिले का सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड भी अब रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। बिहार के नवादा से गिरिडीह तक नई रेल परियोजना के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस नई रेल परियोजना के तहत कोडरमा के सतगावा प्रखंड के अलावे गिरिडीह जिले के तीसरी और गावा भी रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस रेल परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस नई रेल परियोजना से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के कई सुदूरवर्ती इलाके रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे, जिससे लोगों को न सिर्फ आवागमन में सुविधा होगी बल्कि रोजगार के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे।
2: सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और माननीय रेल मंत्री जी को कि उन्होंने सतगावा, कोडरमा और गिरिडीह जिले के अंतर्गत पड़ने वाले वैसे हजारों हजार लोगों की भावना को उन्होंने सम्मान दिया है और वर्षों से इसकी मांग थी कि नवादा से सतगावा गावा तीसरी को गिरिडीह के साथ जोड़ा जाए। तो इसमें दो राज्य जुड़ेंगे और इसमें हजारों हजार लोगों को फायदा होगा और निश्चित रूप से जब रेल लाइन बनेंगे तो उसके बाद क्षेत्र का विकास होगा।
1: झुमरी तिलैया के इंदरवा में 20 महिलाओं का समूह जूट से उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। महिला विकास समिति के बैनर तले राधा यादव के नेतृत्व में आसपास की 20 महिलाएं यहां जूट से अनेकों तरह के उत्पाद तैयार कर बेहतर आमदनी कर रही है। घरेलू कामकाज के साथ हो रही इस आमदनी से महिलाएं उत्साहित हैं और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने में जुटी हैं।
3: हम लोग ऐसे तो घर में बैठे हुए रहते थे, कुछ यहाँ जुड़ने के बाद राधा दी बोली कि यहाँ आओ कुछ सीखते हैं, हम लोग भी सिखाते भी हैं, ट्रेनिंग हो चुका है। ऐसे घर में गप्पे लड़ाते थे इधर से उधर, कहीं यहीं कभी सोना कभी बैठना, तो हम लोग सोचे फिर क्यों वहाँ गप्पे लड़ाए, फिर यहाँ आए तो कुछ थोड़ा सा कुछ रोज नया चीज सीखे। पति का भी हाथ बटाते हैं, बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह हो गया, वो चीज में भी हम लोग का भी रहता है, हम लोग का इनकम जो होता है उससे हम लोग करते हैं।
1: जिले के अंगीभूत कॉलेजों को हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से गिरिडीह के सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ जहां छात्र संघ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी इस मामले को लेकर हेमंत सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
4: एक छोटी सी बात है, 54 किलोमीटर हजारीबाग जाने की दूरी, 125 किलोमीटर गिरिडीह जाने की दूरी, और यही दूरी के चलते विनोबा भावे विश्वविद्यालय बना और फिर से आप इसको गिरिडीह ले जा रहे, आखिर इसे हम क्या कहें। अरे राजनीति आती जाती रहती है, पद आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि राज्य हित में ना हो, क्षेत्र हित में ना हो, छात्र हित में ना हो।
1: कोडरमा से हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय की दूरी तकरीबन 55 किलोमीटर है, जबकि गिरिडीह सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी 125 किलोमीटर दूर। ऐसे में विश्वविद्यालय स्थानांतरण से कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होनी लाजमी है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम जिले में आजकल अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है बंगला कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बंगला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। आज दिन बृहस्पतिवार है और शाम के 7:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेल प्रेमी श्रोताओं का साप्ताहिक खेल पत्रिका कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी।
2: खेल प्रेमी श्रोताओं को राजीव का नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में।
1: शुरुआत सामयिक विषयों पर बातचीत से।
2: आज के अंक में हम बातें करेंगे फुटबॉल में आज से शुरू हो रहे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, साथ ही क्रिकेट में कल से शुरू होने वाले महिलाओं के ICC T20 वर्ल्ड कप की, इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले ODI सीरीज की, कल से झारखंड में शुरू हुए झारखंड की पहली T20 लीग की और अभी हाल ही में संपन्न हुए वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप 2026 की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फुटबॉल से। दोस्तों, फुटबॉल में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद आज रात से यानी 12 तारीख के रात्रि 12:30 से फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी इस बहुत प्रतीक्षित टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसमें पहली बार दुनिया की बेहतरीन 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही है। पहली बार इस विश्व कप की मेजबानी 3 देश यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर कर रहे हैं। 48 टीमों के कारण यह टूर्नामेंट और भी बड़ा तथा रोमांचक बन गया है। सभी टीमों को 12 समूह में बांटा गया है। प्रत्येक समूह की शीर्ष 2 टीमें और सर्वश्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें नॉकआउट चरण में अपना स्थान सुनिश्चित करेंगी। इसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इस विश्व कप में कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा फुटबॉल विश्व कप बनाता है। फुटबॉल प्रेमियों की निगाहें एक बार फिर से दुनिया के बड़े सितारों पर होगी। हर बार की तरह अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इंग्लैंड के हैरी केन, ब्राजील के नेमार मैदान पर अपने बूट से रोमांच पैदा करेंगे, तो वहीं कई नए सितारे भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने मैदान पर उतरेंगे, जिनमें से कुछ खास प्लेयर्स पर हमारी नजरें होंगी। आइवरी कोस्ट के 19 वर्षीय विंगर यान डायमोंडे हो या मैक्सिको के 17 वर्षीय मिडफील्डर गिल्बर्टो मोरा, स्विट्जरलैंड के 20 वर्षीय मिडफील्डर जोहान मंजाम्बी हो या यूनाइटेड स्टेट्स के 23 वर्षीय स्ट्राइकर रिकार्डो पेपी, अर्जेंटीना के 21 वर्षीय मिडफील्डर निको पेज हो या मोरक्को के 20 वर्षीय राइट विंगर यासीन, ऑस्ट्रेलिया के 28 वर्षीय सेंटर बैक लुकास हैरिंगटन हो या टर्की के 20 वर्षीय मिडफील्डर कैन उजुन, ये सभी युवा खिलाड़ी इस विश्व कप में अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। विश्व कप के शुरू होने से पहले फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने इस बार के विश्व कप पर प्रेस से बात करते हुए बोले कि
3: Welcome to this opening press conference of the World Cup, just one day away from the opening match here in Mexico City. Thanks to the many hundreds of you who have gathered here and many more joining us online in the media centers across our 16 host cities and beyond.
4: Great pleasure for me to be here with you. Hello everyone, good morning for this press conference here and how to say it in all the languages. So it's a pleasure to be here today because we are kicking off the 23rd FIFA World Cup. So it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness, and I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time, the right way, and this trophy being awarded in a few weeks' time. The most iconic trophy in the world, the most incredible cup, a trophy and a ball that makes people dream all over the world. And today, I hope we can also speak a little bit about football, because that's what we are here about, right? I know that there are other topics as well, and we will definitely also touch on them, but I would like to ask you to really focus focus on football. So let me start by saying a few things. The first one is that there is an empty seat here in this room today. Il y a une chaise vide dans cette salle. And this empty seat is for a French journalist, Christophe Glaize, who is the only sports journalist who is detained in the world. And of course, he has an accreditation. And of course, he has his seat here for him.
2: Dosto, इस विश्व कप की शुरुआत ग्रुप ए के मेक्सिको बनाम साउथ अफ्रीका के मुकाबले से होगी। इसके बाद ग्रुप स्टेज का दूसरा मुकाबला साउथ कोरिया और चेचिया के बीच भारतीय समयानुसार कल सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ब्राजील अपना पहला मुकाबला 14 जून के सुबह 3:30 बजे मोरक्को के साथ करेगा। नीदरलैंड अपने अभियान की शुरुआत 15 जून को रात 1:30 बजे जापान के खिलाफ करेगा। तो वहीं पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप फ्रांस अपना पहला मुकाबला 17 जून को रात 12:30 बजे सेनेगल के खिलाफ खेलेगा और डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपने खिताब बचाने के लिए मैदान पर अल्जीरिया के खिलाफ 17 जून को सुबह 6:30 बजे उतरेगी। इस फुटबॉल महाकुंभ के रोमांच पर पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी अनादि बरुआ ने कहा कि
5: फुटबॉल मतलब महाकुंभ है, पूरा यूनिवर्स देखता है। तो इस बार एशियन कंट्रीज है, नौ टीमें हैं, तो मजा कुछ अलग ही है फुटबॉल का।
6: तो सर ये जो स्टार हैं, अब मेसी और रोनाल्डो का पुराना जादू है और मबापे ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में दिखाया है, और कई नए खिलाड़ी भी आ रहे हैं जो इस छाप छोड़ सकते हैं।
5: हाँ, अभी छाप छोड़ सकते हैं। अभी अभी जर्मनी के 2 प्लेयर हैं, एक ब्राजीलियन प्लेयर है, जेवियर है, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोरर है। लेकिन वर्ल्ड कप में क्या करेंगे वो देखना है। छोटे जो अंडर 19 और 20 के जो लड़के हैं, जो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हैं, फीफा अंडर 21 खेले हैं, तो वो नो डाउट अच्छे ही खेलेंगे। लेकिन सीनियर तो सीनियर ही होता है, इसमें थोड़ा अलग फुटबॉल का मजा आता है।
6: अर्जेंटीना पिछली चैंपियन है और फ्रांस पिछले 2 बार से, एक बार 2018 में चैंपियन बना, 2022 में फाइनल में पहुंचा। तो अर्जेंटीना और फ्रांस और ब्राजील, इनकी दावेदारी कितनी पुख्ता देखते हैं सर?
5: बहुत, अभी ये बहुत ही आपने कठिन जवाब पूछा कि कौन सी टीम आएगी। देखिए, पहले लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच जो एशियन कंट्री खेली, उन्होंने 5 गोल से हारे रशिया से और सऊदी अरेबिया ने, और सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया लास्ट वर्ल्ड कप में। तो खाली अर्जेंटीना एक ही मैच हारी, लेकिन फाइनल वर्ल्ड कप लेके आई है। तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी, लेकिन ये है कि हाँ, ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है। अर्जेंटीना आ सकती है, एंड बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है, एक बार ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है। तो कम आंकना बड़ा मुश्किल है, बोल नहीं सकती कि कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा।
6: नॉर्वे लंबे समय बाद आ रही है और हॉलैंड ने बड़ा एक रुतबा हासिल किया है इस विश्व कप से पहले, बड़े कन्नावर स्ट्राइकर हैं। और यमाल 22 साल के, स्पेन की बात की, इस 22 साल के यमाल को भी निगाहें रहेंगी,
5: एकदम रहेगी। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है। अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो, या आप ब्राजीलियन प्लेयर लो, नेमार लो, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए। और अभी जो आप उमर को बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा प्लेयर है, स्किलफुल प्लेयर है और गोल मारने भी बहुत सक्षम है। लेकिन जब मैन मार्किंग होता है वो कैसे खेलेंगे, मैन मार्किंग में दूसरा कौन सा प्लेयर फायदा उठाएगा, वो जो फॉर्मेशन होता है कोच के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा गेम होगा इस बार वर्ल्ड कप में।
6: जी, इस बार अंतिम विश्व कप माना जा रहा है मेसी का, रोनाल्डो का, लुका मोड्रिच का, तो आपको लगता है कि यहाँ वो एक छाप छोड़ना चाहेंगे? और 13 गोल तो अब तक कर चुके हैं मेसी, और मिरोस्लो क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड भी एक दाव पे रहेगा।
5: एकदम सही कहा, मिरोस्लो क्लोज का रिकॉर्ड भी दाव पे रहेगा। ये तीनों प्लेयर आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। आपने जो क्रोएशिया का प्लेयर का बोला मॉड्रिच के बारे में, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इतना बढ़िया प्लेयर है, एक बार गोल्डन बूट भी मिला, और अच्छे फुटबॉलर है। अगर ये इस बार अच्छा खेल के जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं, तो याद रहेगा। क्योंकि इसके पहले जब मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था, तो मैराडोना ने, माइकल प्लेटिनी ने, इन्होंने छाप छोड़ के गए हैं 86 मेक्सिको फुटबॉल ये वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये अगर लास्ट वर्ल्ड कप भी खेलते हैं तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे।
2: तो दोस्तों, फुटबॉल का विश्व कप केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह विभिन्न देशों, संस्कृतियों और लोगों को जोड़ने वाला एक वैश्विक उत्सव है। मैदान पर प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन मैदान के बाहर दोस्ती, सम्मान और खेल भावना का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है। तो तैयार हो जाइए फुटबॉल के इस महाकुंभ के लिए। जहां हर गोल एक नई कहानी लिखेगा, हर मुकाबला रोमांच पैदा करेगा और अंत में एक टीम विश्व फुटबॉल की नई चैंपियन बनेगी। दोस्तों, फुटबॉल के बाद अब चलते हैं क्रिकेट की ओर। क्रिकेट में कल से महिलाओं का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। एक बार फिर से भारतीय महिलाएं बल्ले और गेंद से अपना कमाल दिखाएंगी और पिछले ODI वर्ल्ड कप के इतिहास को दोहराना चाहेंगी। यह टूर्नामेंट न केवल क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांच पैदा करेगा, बल्कि यह महिला खेलों की बढ़ती लोकप्रियता और सशक्तिकरण का प्रतीक भी बनेगा। इस बार यह वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में 12 जून से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा। इस बार का महिलाओं का यह T20 विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार इसमें 12 टीमें भाग ले रही हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा महिला T20 विश्व कप बनाता है। इस विश्व कप में कुल 33 मैचेस खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबला विश्व क्रिकेट के प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस विश्व कप में दुनिया के शीर्ष टीमें अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए मैदान में उतरेंगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड जैसी टीमें खिताब के लिए संघर्ष करेंगी। यदि इस टूर्नामेंट के इतिहास पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम रही है और उसने यह खिताब 6 बार अपने नाम किया है। वहीं न्यूजीलैंड मौजूदा चैंपियन के रूप में अपने खिताब की रक्षा करने उतरेगा। इंग्लैंड अपने घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश करेगा, जबकि भारत पहली बार महिला T20 विश्व कप जीतने के सपने को साकार करना चाहेगा। भारतीय महिला टीम से इस बार काफी उम्मीदें हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम अनुभव और युवा प्रतिभा का संतुलित मिश्रण प्रस्तुत करती है। बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, जेमिमा और शेफाली वर्मा जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं। हाल ही में भारतीय महिला टीम के आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई है और टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। टीम की संभावनाओं पर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बताया कि
7: इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी वर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट फॉर सो मेनी इयर्स एंड गुड टू सी दैट यू नो आफ्टर इयर्स हार्ड वर्क पेड ऑफ एंड दिस टूर्नामेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन इज शेपिंग रियली वेल एंड होपफुली विल प्ले अ बेस्ट क्रिकेट। T20 cricket is all about you know adapting as soon as possible because it's quite fast and you don't have that much time and it's all about you know playing your best cricket and going fearless. Yeah, they are very important world class player. They always set the tone for us and hopefully they'll do the job for us in this World Cup also. Yeah, definitely. I think every year cricket is, you know, growing and every year women's cricket is, people are loving and they want to play, watch us playing more and more. And this World Cup is going to be very exciting and hopefully, you know, we'll give our best. Yeah, definitely. I think first game is very important and it always set the tone for you. And I think we are really looking forward for that. Hopefully, you know, we'll give our best.
8: The last time you were here in 2017, lost out to England in the final at Lords. Do you feel that there's a bit of unfinished business here in the UK?
7: Yeah, definitely. I think this year, this time will give us fair chance to, you know, recreate the history and hopefully we'll go with some positive memories. I think this time, you know, a lot of positives. Unfortunately, we didn't win the series, but I think a lot of learnings and...

0: we have got a lot of positive approach from all of us, and hopefully, you know, before the World Cup, we all are in the good state of mind and play our best cricket.
1: Hi, question for Harmanpreet Kaur. On the one hand, you have a tournament debutant whose teammate had to give up a job, but here you are, having led India to a World Cup victory for the first time in women's cricket. You yourself are now a Padma Shri, the fourth highest civilian award in India. All your teammates, most of them, are on billboards endorsing everything from dog food to jewellery and credit card. What can a Women's T20 World Cup win do from here on for Indian women's cricket?
0: Well, I think if we play good cricket, if we're able to, you know, create some good memories here, definitely things are going to change back home, and which we have seen the last ODI World Cup when we won. After that, we have seen massive change. Many girls, they're coming to play cricket, and I think when we do well, a lot of things change, and hopefully, you know, we play our best cricket and try to, you know, make impact on women's cricket.
2: Harmanpreet, you have seen South Asian cricket has grown a lot, especially women's cricket, and India has won a World Cup, and Sri Lanka last year won the Asia Cup. How do you see the Asian women taking up cricket and growing the game?
0: Yeah, very happy the way, you know, Asian girls are performing and doing so well, and hopefully, you know, the way we are doing will keep motivating others and keep encouraging them to play cricket, and good to see that, you know, how everyone is coming together and try to, you know, take women's cricket to the next level.
3: Already winning the ODI World Cup last year, and you got a big test match as well after the World Cup at Lord's. So winning this T20 World Cup, winning that test match, after that, would you say you've kind of won it all?
0: Well, good to see that, you know, we are getting a lot of cricket, and schedule is quite packed, and as a cricketer, we all wanted to, you know, just keep playing, and really want to thank BCCI and ICC for, you know, giving us back-to-back cricket, and really excited about T20 World Cup and the test match. Yeah, 100%. I think everyone played really good cricket before coming here, and I think this is going to be very exciting, and I'm really looking forward for this.
4: Dosto, विश्व कप के आयोजन के लिए सात प्रमुख मैदान चुने गए हैं, जिनमें लॉर्ड्स, द ओवल, ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंगले और एजबेस्टन जैसे प्रतिष्ठित स्टेडियम शामिल है। इन मैदानों पर क्रिकेट का समृद्ध इतिहास रहा है और यहाँ खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व की बात होती है। इस विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। उसके बाद भारत का अगला मुकाबला 17 जून को नीदरलैंड के साथ होगा, फिर 21 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो 25 जून को बांग्लादेश के खिलाफ, और ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इस टूर्नामेंट का नॉकआउट मुकाबला 30 जून से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में 5 जुलाई को होगा। इस विश्व कप में कई युवा खिलाड़ियों पर भी नजर रहेगी, जो पहली बार विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। वहीं अनुभवी खिलाड़ी अपने अनुभव से टीमों को सफलता दिलाने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए महिला क्रिकेट के इस महाकुंभ के लिए, जहां चौकों छक्कों की बरसात होगी, रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे और दुनिया के सामने एक नई विश्व चैंपियन को देखने के लिए। दोस्तों, क्रिकेट में आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट श्रृंखला पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच अभी हाल ही में एक टेस्ट मैच की श्रृंखला खेली गई, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से जीत लिया। भारत ने यह मैच एक पारी और 300 रनों से जीत हासिल की। इस मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल के शानदार शतक की बदौलत 564 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पारी घोषित कर दी। पहली पारी खेलने उतरी अफगानिस्तान की टीम मात्र 152 रनों पर सिमट गई। भारत की तरफ से पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे मानव सुथार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। फॉलो ऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान की टीम दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाई और अनुभव की कमी खास देखने को मिली और पूरी टीम मात्र 112 रनों पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर ने 4 और कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए। अपना पहला मैच खेल रहे मानव सुथार को उनकी घातक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। प्लेयर ऑफ द मैच मिलने के बाद मानव ने कहा कि
5: वंडरफुल डेब्यू, कमाल है ना। टेस्ट मैच कितना आसान है?
6: नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं,
5: मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। बट रियली वेल बोल्ड, क्या थी आपकी फीलिंग्स जब आपको पता चला कि आपको ये जो कैप है जिसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं, ये आपको मिलने वाला है?
6: सर बहुत ही अनरियल फीलिंग थी, लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यही सपना था स्टार्टिंग से कि इंडिया के लिए खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलना है।

0: पेस यूज करता रहूं।
1: जब आपने शुरुआत की गेंदबाजी में तो ऐसे लग रहा था कि आप केवल स्टॉक बॉल डालना चाहते हैं, केवल घुमाना चाहते हैं, क्या ये सही सोच है जो हम ऊपर से जो देख रहे थे? और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा ऐसा लग रहा था कि आप अलग चीजें कोशिश कर रहे थे।
0: हाँ सर, स्टार्टिंग में यही था कि विकेट कैसा खेल रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी स्टॉक डिलीवरी को ही बैक करूँ। तो फिर जैसे पता चला कि विकेट थोड़ा स्लो है और उसमें मतलब थोड़ा पेस चाहिए, तो फिर उस हिसाब से फिर वेरिएशन स्टार्ट किया। पहले यही था कि स्टॉक डिलीवरी जितना ज़्यादा हो सकता है।
1: और एक प्लेयर के लिए कितने गर्व की बात है कि जब सेकेंड इनिंग्स की बात आई तो कप्तान ने आपको नया गेंद सौंपा?
0: बहुत गर्व की बात है कि मतलब क्या बोल सकते हैं सर, बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छी फीलिंग है।
1: और जो आपने पहला अपील जो रिव्यू करने की चाह थी
0: वो हीट ऑफ द मोमेंट हो गया, मुझे तो ऐसा लगा एकदम सामने है, तो ऐसा था।
1: टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी शुरुआत की है, आपको क्या लगता है आपने इस टेस्ट मैच से क्या सीख ली है?
0: सर यही कि जितना ज़्यादा हो सकता है कंसिस्टेंटली एक जगह पे बॉल डालना, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में बहुत पेशेंस का खेल है, तो यही सीखा कि जितना ज़्यादा हो सकता है पेशेंस से बस डालते रहो।
1: थैंक्स अ लॉट और रियली वेल बोल्ड मानव, इसको बरकरार रखिए, आपको पूरी ऊंचाइयां भगवान नसीब दे।
0: थैंक यू सो मच सर।
2: वहीं मैच जीतने के बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि
1: शुभमन मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन द विन, योर इमीडिएट थॉट्स?
3: आई थिंक अ कंप्लीट विन फ्रॉम आवर साइड, यू नो, टिक्ड ऑल द बॉक्सेस, सो वेरी हैप्पी विद दैट।
1: And when you came into today, many of us felt maybe you might have a bat. Was the decision to enforce the follow-on unanimous? Because at the end of the day, it's pretty hot here.
3: No, it was very hot. We decided if we get them before lunch or just after the first innings, we'll see if the bowlers are fresh. We'll give them a follow-on. If not, we'll bat couple of sessions and maybe at the end of the play, we'll give them a bowl again. But we got quick wickets. We came back. And also the way our fast bowlers bowled, Siraj got us that crucial wicket when we gave them a follow, and Prasidh got three important wickets.
1: And just coming to the spinners, you had a trio of them. What were your impressions the way they bowled?
3: Very well, the kind of quality I think Manav, Washi and Kuldeep has, all three of them, there was never any doubt. It's all about getting the experience and getting number of overs and seeing, on wickets like these, how to set the batsman up, keep varying the pace, keep testing the batsman at different areas.
1: And also when you look at your side, it's a young side. We've spoken about the team being in transition. What do you think India as a team and you as a captain need to do to take this team forward?
3: I'd say pretty simple, when you're batting first innings, try to post 350 on the board every time you get into bat, no matter where we are playing, what kind of conditions it is. I think there's enough trust in our bowling group that we can take 20 wickets anywhere whenever there's a transition, we feel the batting group is under more pressure, and we are trying to get experience, we are trying to build here to see what kind of game can work for us as a batting group in different conditions and different situations. How can we keep posting regularly 350 400 totals on the board?
2: Ab भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 जून से 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का आगाज होगा, जिसमें चोट के कारण विराट कोहली खेलते नजर नहीं आएंगे, पर दर्शकों को एक बार फिर से हिटमैन रोहित शर्मा का अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते देखने का आकर्षण मिलेगा। दोस्तों, क्रिकेट की बात हो ही रही है तो क्यों ना झारखंड क्रिकेट की भी बातें कर ले। कल यानी 10 जून से हमारे झारखंड में भी JSCA यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा पहली बार IPL की तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं और कुल 27 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का आयोजन रांची स्थित JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह में पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, जिसने इस आयोजन की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। इस लीग में भाग लेने वाली टीमें झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें छोटा नागपुर रॉयल्स, रांची टाइटंस, कोयलांचल सुपर किंग्स, जमशेदपुर स्टीलर्स, धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स जैसी टीमें शामिल है। झारखंड क्रिकेट लीग पर JSCA के सेक्रेटरी सौरभ तिवारी ने बताया कि
4: एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है लोग के लिए, और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में हमारे जितने प्लेयर झारखंड को रिप्रेजेंट कर सके हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, और लोग अच्छा यूज करें, क्योंकि अभी से अगर आप देखेंगे तो इससे पहले जब टूर्नामेंट नहीं होती थी तो बहुत लिमिटेड मैचेस हुआ करते हैं, ताकि प्लेयर

0: को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है खेलने के लिए, लेकिन अभी ज्यादा प्लेयर लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा खेलने के लिए और होपफुली टूर्नामेंट बहुत अच्छा हो। मैं झारखंड के युवाओं को यही बोलूंगा कि जो आपको फैसिलिटी मिल रहा है, जो जीएससी आपको प्रोवाइड करा रही है, उसको आप अच्छे से यूज कीजिए और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप हार्डवर्क करिए और कोई भी एक फ्रेंचाइजी की टीम में आप आइए और अच्छा परफॉर्म करिए। फिंगर क्रॉस, गुड लक गाइस, और होपफुल कि ये टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल हो और अगर आने वाले टाइम में 4-5 साल में अगर एक भी प्लेयर मिले और इंडिया के लिए खेल जाए तो मुझे लगेगा कि ये लीग सक्सेसफुल हो गया जीएससी का कराने का। थैंक यू
1: दोस्तों। कल उद्घाटन डे के अवसर पर दो मैचेस खेले गए। पहला मैच रांची टाइटंस और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच खेला गया, जिसमें रांची टाइटंस ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 155 रन बना सकी। रांची टाइटंस की तरफ से सबसे अधिक राजनदीप सिंह ने 40 रनों की पारी खेली। वहीं छोटा नागपुर रॉयल्स के ऋत्विक ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। जवाब में 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी छोटा नागपुर रॉयल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 150 रन ही बना सकी और यह मैच रांची टाइटंस 5 रन से जीत गई। वहीं कल का दूसरा मैच चौकों और छक्कों की बारिश से भरा रहा। यह मैच कोयलांचल सुपर किंग्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच खेला गया। इस मैच में कोयलांचल सुपर किंग्स पहले बैटिंग करते हुए शरणदीप सिंह के शानदार शतक और उत्कर्ष सिंह के तावातोड़ 77 रनों की पारी के बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 250 रन बनाई। इस मैच में जमशेदपुर स्टीलर्स की तरफ से काफी खराब क्षेत्र रक्षण देखने को मिला और कई आसान कैच छोड़े गए। जवाब में 251 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जमशेदपुर स्टीलर्स की टीम मात्र 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बड़े लक्ष्य का पीछा करने का दबाव स्टीलर्स पर साफ देखने को मिला। कोयलांचल की तरफ से राहुल प्रसाद ने 5 विकेट अपने नाम किए। अब आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहला मैच छोटा नागपुर रॉयल्स और धनबाद डायमंड्स के बीच खेला जा रहा है तो वहीं दूसरा मैच रांची टाइटंस और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों अब चलते चलते थोड़ी बातें वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की। योगासन का पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 जून से 8 जून 2026 को गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन में 79 देशों के कुल 522 खिलाड़ियों ने अलग अलग 6 एज कैटेगरीज में हिस्सा लिया। मेजबान देश भारत ने इस चैंपियनशिप में एक तरफा दबदबा दिखाते हुए कुल 114 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 102 स्वर्ण, 10 सिल्वर और 2 कांस्य है। वहीं जापान 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं अर्जेंटीना 2 स्वर्ण और 3 रजत के साथ तीसरे स्थान पर इस इवेंट को समाप्त किया। इसके साथ ही हमारा आज का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। कार्यक्रम की प्रस्तुति से मुझे यानी राजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेल खिलाड़ी।
3: खेल प्रेमी श्रोताओं का साप्ताहिक खेल पत्रिका कार्यक्रम खेल खिलाड़ी अभी आप सुन रहे थे। ये आप आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर। हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनिए बस कुछ ही पलों में।
4: हेलो डॉक्टर,
5: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
4: हेलो डॉक्टर।
5: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर। विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
4: हेलो डॉक्टर।
6: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
7: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
6: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली

0: 1100001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
4: दिन के 11:05 से 12 तक
3: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हर दिन आकाश पर काले मेघों को ढूंढती थी आंखें, तपती धरती को भी रिमझिम बरसती बूंदों का इंतजार था। आज दोपहर बाद आसमान पर छाए काले मेघ और कुछ पल जमकर बरसे, गर्मी से राहत मिली और शाम बेहद सुहानी हो गई। सुहाने इन लम्हों को आइए थोड़ा सुरीला करें और सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीरा शर्मा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना आशाएं फिल्म का ये गीत। गीत के बोल मीर अली हुसैन ने लिखे थे और संगीत दिया था सलीम सुलेमान ने।

0: लक्की अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में आपने सुना सुर फिल्म का ये गीत। बोल लिखे थे निदा फाजली ने और संगीत MM किरवानी ने बनाई थी। श्रोताओं, इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM 102.4 MHz पर। सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाकी नगमे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: नमस्कार जमशेदपुर। नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
2: ज्ञान विज्ञान
3: इतिहास के पन्नों से,
2: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
1: मौसम का मिजाज,
2: अपने शहर की खबरें,
3: बातों मुलाकातों के साथ
1: सुरीला मनोरंजन
2: और भी बहुत कुछ।
1: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
2: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
1: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 MHz पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30।

0: ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 2960445 اور کوڈ ہے 0657. تو آپ بھی جڑ جائیے ہیلو من بھاون کاریکرم سے.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है. 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई. क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है.
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है. सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी. आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है.

इन संदेशों के बाद एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से, जुबिन नौटियाल की आवाज़ में।

मिस्टर एंड मिसेस माही, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। आवाज़ें जुबिन नौटियाल और साथियों की थी, कौशल मुनीर के बोल थे और संगीत था तनिष्क बागची का।

अमित त्रिवेदी की आवाज में आपने सुना फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का ये गीत। बोल लिखे थे स्वानंद किरकिरे ने और संगीत अमित त्रिवेदी ने बनाई थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म दिल मांगे मोर का ये गीत। इस गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत हिमेश रेशमिया ने बनाई है।

0: सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में फिल्म दिल मांगे मोर के इस गीत के साथ ही श्रोताओं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
4: पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन।
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण

0: योजना जो, जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली पांच है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
2: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक

की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना कि प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक जो इस तरीके की बात की, जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो। तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का

0: असर दिख रहा है। यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया का कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की।
1: जी, जी।
0: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहेंगे जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
1: जी जी,
0: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गाँव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए।

0: तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर, और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हुआ वो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया। आज से 5 साल 6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी। और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है
1: जी,
0: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने। ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
0: मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा
1: जी।
0: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

वाणी के दिल्ली केंद्र से, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मीरा शर्मा। सबसे पहले स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आपने सुना सितमगर फिल्म का ये गीत। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे और धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने।

तपस्या। इसी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजें थी, एमजी हशमत के बोल और संगीत था रविंद्र जैन का।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना शहनाई फिल्म का गीत। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे और संगीत रविशंकर शर्मा ने बनाई थी।

शैलेंद्र के बोलों को सल चौधरी ने संगीत से सजाया था। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म मधुमती का ये गीत आपने सुना।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम गीत का ये गाना। गीत के बोल इंदिवर ने लिखे थे और संगीत जगजीत सिंह ने बनाई थी। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का ये गीत। इस गीत के बोल

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवाएंगे नीलाद्री कुमार का सितार वादन राग होगा।

शास्त्रीय संगीत के आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुन रहे थे नीलाद्री कुमार का सितार वादन राग था श्री। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा

0: विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has said, when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the